捧出我们这献给那个小喇嘛下心啊的呢，心里面什么大不困难的啊，你弄啊的看看那么要给你可以住，咱们的

हे जगत की मपो, नंगी नखोंग थम्बालदा सिनेजगी ननाई की भक्ति से कुरुमजरी ननाईना हे जगत की मपो।

0: 공감 망망리 가이드 가이레 아무송 상설기 농조 미품 사랑나 버 톡버데기 거랑 농부기 원이 이토키 바울이서래
1: अदोमले थोरम ताबिरी बसे आकाशवाणी इम्फाल की कंगना सेनल की अयुब की थोरम परिंट की ने आउजिगमु उंफम मसीद संदोक सरी गुरु गुलाबी नद संकीर्तन अकादमी की सेचक पसिंग सपा खुबा इसे
2: श्री श्री जगन्नाथ बलभद्र शुभ

0: ꯁꯥꯅꯥꯎꯖꯝ ꯑꯅꯤꯜ ꯁꯤꯡꯅ ꯈꯣꯡꯕ ꯁꯦꯛꯁꯥꯐꯣꯟ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯗ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯪꯂꯥꯖꯤꯗ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯂꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯪꯂꯥꯖꯤꯗ ꯄꯥꯎ ꯁꯤꯂꯣꯡꯗꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯗ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯕ ꯐꯪꯕꯤꯔꯒꯅꯤ
1: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल। भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी के बाद अमेरिका ने ईरान पर घातक हमले किए। और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। सत्र के दौरान ये बैठक पारंपरिक रूप से मंगलवार को आयोजित की जाती है। बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता और समन्वय को प्रदर्शित करना है। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मानसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं।
3: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
2: तीन राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू स्कोपिये में मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टिजन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर आफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू का उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉ जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया।
4: पनामा वैश्विक व्यापार मार्गों के लिए एक प्राकृतिक सेतु और व्यापक लैटिन अमेरिकी क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। पनामा नहर के कारण यहाँ की लॉजिस्टिक अवसंरचना विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहचान रखती है। हम शिक्षा, छात्रवृत्ति, औषधि उद्योग, प्रौद्योगिकी और सबसे महत्वपूर्ण व्यापार सहित अनेक क्षेत्रों में आपके सहयोग और साझेदारी की रुचि की सराहना करते हैं। हमें विश्वास है कि इन क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने से दोनों देशों के बीच आर्थिक, शैक्षिक और तकनीकी संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे।
2: श्री जयशंकर ने बेल्जियम के राष्ट्रीय दिवस पर वहां के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट तथा देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत बेल्जियम के साथ अपनी बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित

0: किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 1 भारतीय गंभीर रूप से घायल है। मंत्रालय के अनुसार घटना के समय जहाज पर 17 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें 5 भारतीय नागरिक शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹1,500 करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। निर्वाचन आयोग आज कोलकाता में डाक मतपत्र प्रणाली को अधिक समावेशी, सुरक्षित और सुलभ बनाने पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सभी 24 चुनावी जिलों के चुनाव अधिकारी, साथ ही भारत और कई अन्य देशों के चुनाव प्रशासक, नीति निर्माता, शिक्षाविद और चुनाव विशेषज्ञ शामिल होंगे। चर्चा का मुख्य विषय पोस्टल बैलेट और विशेष मतदान व्यवस्थाओं को ज्यादा समावेशी, सुलभ और सुरक्षित बनाने के तरीकों पर होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्य चुनाव अधिकारी नीलम मीना इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम में पोस्टल बैलेट, चुनावी निष्पक्षता बनाए रखने, धोखा धड़ी रोकना, ऑडिट सिस्टम, कानूनी ढांचे, टेक्नोलॉजी पर आधारित विशेष वोटिंग सिस्टम और रिमोट वोटिंग के भविष्य जैसे विषयों पर सत्र होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सत्र के दौरान नेपाल, अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना और अन्य देशों के चुनाव विशेषज्ञ वर्चुअली अपने अनुभव साझा करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय है और कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय मौसम विभाग ने आज राज्य के 5 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
3: हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हो रही मानसूनी वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भूस्खलन के कारण अनेक संपर्क सड़कें अवरुद्ध हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में बिजली और पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। प्रभावित इलाकों में बहाली का कार्य जारी है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज कांगड़ा, मंडी, चंबा, सिरमौर और कुल्लू जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियात के तौर पर कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर जिलों में सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को आज लगातार दूसरे दिन भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अनावश्यक यात्रा से बचने तथा नदियों, नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उधर जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी नई घटनाओं में एक महिला और उसके 2 बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई है। इससे पिछले 3 दिनों में मरने वालों की संख्या 23 हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी दिन के दौरान मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। सिक्किम के नामची जिले के समरडुंग में NHPC जल विद्युत परियोजना की बन रही सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तलाश और बचाव अभियान जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: ये घटना कल दोपहर दक्षिण सिक्किम के समरडुंग में NHPC प्रोजेक्ट पर घटी। NDRF, SDRF और दूसरी एजेंसियों को तुरंत ही बचाव कार्यों में लगाया गया है, लेकिन गैस लीक होने के कारण बचाव दल शुरुआत में घटना स्थल तक नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि सभी की कोशिशों से अब तक 8 शव बरामद किए जा चुके हैं। माना जा रहा है कि भूस्खलन के कारण बन रही सुरंग को नुकसान पहुंचा है, लेकिन असली वजह अब तक नहीं पता चल पाया है। वाट्सएप दल फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिनमें मजदूर, एनएसपीसी के अधिकारी और एक प्राइवेट इंजीनियरिंग फर्म के कर्मचारी शामिल है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंडी बर्नहम को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा लोकतांत्रिक मूल्यों से बंधे हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों में व्यापक सहयोग है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाल ही में जॉर्डन में दो अमरीकी सैनिकों और इराक में एक सैनिक के मारे जाने के बाद उनकी ये चेतावनी आई है। इस बीच अमरीकी सेना ने आज ईरान के खिलाफ नए हमलों की शुरुआत की है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस सैन्य क्षमताओं को और कमजोर करना है, जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले के लिए किया जाता है। इससे पहले ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि उसने ईरानी प्रांतों पर अमरीकी हमलों के जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमलों के तीन दौर के जरिए बहरीन और कुवैत में अमरीकी संपत्तियों और ठिकानों पर तेज प्रहार किए हैं। चाइना ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू हो रही है। प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व पीवी सिंधु करेंगी। महिला सिंगल्स के पहले दौर में सिंधु का सामना उन्नति हुडा से होगा। देविका सिहाग भी महिला सिंगल्स में खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में भारत की ओर से लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एचएस प्रणॉय चुनौती पेश करेंगे। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अंश करुणन भारत के खिलाड़ी हैं। वहीं ओलंपियन तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला, रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे मिक्स्ड डबल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। महिला डबल्स में भारत की कोई भी खिलाड़ी नहीं है। और हॉकी में FIH यूथ 5S एशियाई चैंपियनशिप में भारत की पुरुष और महिला सब जूनियर टीमों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। ओमान के मस्कत में खेले गए मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने कजाकिस्तान को 8-3 से हराया। भारतीय पुरुष टीम ने अपने पहले मैच में बांग्लादेश को 7-3 से शिकस्त दी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
5: राजधानी दिल्ली से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अपने मुख्य पृष्ठ पर लिखा है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर राजनीति ना हो, SIT के पुनर्गठन की संभावना तलाशें। हिंदुस्तान ने इसी खबर पर सुर्खी दी है, चढ़ावा चोरी की जांच नई SIT करे। दिल्ली में कल हुए प्रदर्शन को भी अधिकतर अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, संसद मार्च में झड़प, सरकार से बात, आंदोलन जारी। राजस्थान पत्रिका ने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और CJP प्रतिनिधियों की मुलाकात का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, सरकार से आश्वासन के बाद दीपके ने अनशन तोड़ा, 100 प्रदर्शनकारी घायल। अमर उजाला ने संपादकीय में इसी खबर का उल्लेख किया है, संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनौती का संकेत है, जिसमें संवाद का स्थान धीरे धीरे टकराव लेता जा रहा है। ये निर्विवाद है कि संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने का अधिकार देता है। लोकतंत्र की मजबूती भी इसी में है कि असहमति को स्थान मिले और सरकारें जन भावनाओं के प्रति संवेदनशील हों, लेकिन ये भी उतना ही आवश्यक है कि प्रदर्शन संविधान और कानून की सीमाओं के भीतर हो। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है, एथेनॉल से कार ही नहीं चलेगी, चूल्हा भी जलेगा। LPG के अलावा एथेनॉल को रसोई ईंधन का विकल्प बनाने की तैयारी, सितंबर तक नीति का मसौदा तैयार कर सकती है सरकार।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल, भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों

그들 땜질 밥에 미트름 끝에 세색립이 사리다가 아스미 세링보 호멘디와 연마디 세랑바나 지 술산드 서마

ताइबंगपान सेंबिरिबा मपु महाकना पुंसीदा थेंनखिबा थेंनरिबा अमदी थेंनरकदौरिबा आवा नुंगाई पुंबा लानथेंनदुना चटमिननाबा खोंबुरोय अमदी थौसिनबिरमगनी थाजे हाइनाबले मरिंगी संबाईदी ना महांगदी हाइना अवाबगीसु नुंगाईबले कपपकीसु नोकबले अहोबगीसु अरोयबले ओयगीसु येतले आईगीसु नहाब ताइबंग मपुना तंबीरमदबा हौनब्रादो हौजिक अमुक ताबीरसी केनेडी खुमनगी नाइतों खोंजलदा आइखो यांबुंगना सैरेंगबा अमदी डेंसन सलामना सैरांगबैसै।

ताबिरी गाई को ताकि अदुमन थोरम ताबिरी बसी आगस्ट में निम्फालने हौजी का मुख चंदोक्षरे तकेल मयूम नरेश सिंह सप्पा मतमिसई आहान बदल जरे दोनेश्वर कौनसम की मयेकता करीनो महाइरी लेसिलना असुमन सेहोब मतमिसई

0: महारानी, निंगथावडेल स्वर्गदेव राजे शोर्गी महारानी कुरंग नयनी।
1: इसेमसी मिंगथोलसिदा आईगिरी चाउथोक पलेजदे मैतै निंगथाव इतो निबुंगो चिंगथंग खोमबगी ममोम लोय फोंगद लोपिनी आईदी।
0: लाइरिम बिमकुम निंगथिबी नंगना इंद्रबंग ससिदा लेंगशिल्लक पदगी रानी लैरांग खुदिंगमक कबोकंग मपान ओनख्रे।
1: इसेमसी
0: गमलाद लैतिंगलिब लैरांगदि नापगी नासोम नत्ते निंगथावसिना मागी मितमांगदा लैतेंगी ओइनदंग गेंगली।
1: इसेमसीगी पाउखोंग ओइबा वाहाइ सिंगादुगी मरम अपंग बिनानाउदी खंजदे।
0: मसिगी मरम पुमनमक नंगननी नंगना
1: करमना
0: इंद्रबंग ससिगी निंगथोरेला सिनादि खल्ली कसारमदी मैतेइ निंगथावनिबु लानसोंगनदना महाकी मखा पोलहली।
1: करी
0: महाकी मखा पोलहलीबदी शोपनतगी निंगथौ अनिखक्तने।
1: इसेमसी
0: अदुगा लान छोकनदना महारानी कुनग हुमदोइदी मैतै निंगोलमगी मखा पोलहले। राजेश्वर निंगथौना नतोंदा जोय सिंह मिंगथोन पीबदा नतो निबुंगो सिंह थंगखोंबा हरावन नोकसकी।
1: सीएमसी
0: अदुग नंगना आइखोय कुनग हुमदोइदा इसेमसी नत्रग इसेबे महाइन मिंगथोन पीबदा आइखोयन पेनथोकलमगनी खनब्रा।
1: ओ इसेमसी खोयगिनिंग दोलना अदुक चाउन पोमलमगनी हाइबदी ननाउदी नोंग मतसु खल्लुदे।
0: थांग पाइदन यालिब नंगनदी करमन सैना फंगनी।
1: इसेमसी
0: नंगी नतिक नयाईगी थांगन शोकलिब सिंगसे मखोल थोकतन कपली हाइब नंगखंग।
1: इसेमसी ननाउदी लाइबक थीबनी इसेमसिंगी थमोई मसक खंगजरे इनिंग थौगी अयाब लौजरगा इरेसा सिंग न खुंदारीबा सरुई सराई लमदमदा निंगथौन साबिरीबा संगाइदुदा चच्चखरगे।
0: ओ नंगन सरुई सराई मोगलौ घाट सतखिबगी मरममदु निंगथौन हंगलकपदा पौखुममदु कमलावरी ओहेनगदोरीब्रा।
1: आइदी असेमब पौखुम कैदोंगैदसु पिजखिद्री
0: मियोइबन अचुममंगाक्त तौदुना नुंगाइन हिंगबया देहेबसी नपाम लमदम सना कोनुंगदगी तमजरकतब।
1: इसेमसी
0: अशेम बारान बसु खरसु याई फगदब ओइरबदी मदो तौगदबने मसे लेंगक लोन।
1: इसेमसी ने पामबिरी बसि करिनो मरम थोइदोक तबदा इपाम कोनुंग पाबन बदी फोंग द लोक पिना ताब गमजदे।
0: लोन बिगी मिंग थोलबु नसागी फिजेत लेटिंग हराउने याजरी बदो नसेम सिंग द लंचिंग नबनी न
1: मिंग थोल लसिदा आइन खोइदारम गनी खनबिब्रा आइन अहल लोयरा बन खोइगि निंग थौरे लसिदा लोन नबी ओरखि बदि इरे पाक मै तैले पाकी फंबाल गिदम कठोक पनि मसिन निंग थौरे राजेश्वर गि अपाम खुदिंग आइन ngakli मसिसु इंद्र बंस सिगि याई फन बनि इतो निंग थौना मनिंग तंबगी उसिन नोय हनबिरबि आइदि अहोम लाइफ पाक न मिनाय ओइन सिजन न बसु कांगलने लोनबि हाय बसिबु करम मनु पीगी मपु कना न पामलम गदगे मसिदि इराय बक नराय बक तम खब नोंदम खोलनी
0: नोंदम खोल द तैन गनो रानी मिंग थोल द अपाम बपोक नोरे हाइन मयक छेंगो।
1: ओ आईगी मांग द लोनबि ओइबिरम लबि इसेम छि कोइदि अपाम बद युम फम मोइ बेखिब्रा
0: हि चिन थक त खम लबदि शिवन तन करि छु फंग लो
1: सिंगनर पखोदि माइक थी बपि बद कुरंगने यनिगे अरु बनते लाइबक मानरबि लोनबि सिंग पन सिंदुना अंगम मथौ सिंग नुपि बु इया या बनि खल्लि बसिगि मायोक्ता लान होसि आइरबदि लुचिंग दि ओइबद करे सोके म पोक्चदे।
2: तो दरबार की पाऊनी
0: इनिंग तो दरबार की करी पाऊ ओइर बनो इनिंग तो
2: कृति चंद्र बोर बरवान लेपाक असी पुया कया खोंकत तो न मही तुम न थारी मोरान सिंगी गुरु अचत बूज महंत की थमोई सोप नब थबक नहन तौरी बसिबो चुमली ब्रा वाई बसिबो फंबाल नाक नबगिरा नत्रगा अपुन मले पाक मियाम नाक नबगिर मकरा नत्रगा जुमा Noma ayama Kristi Chandra bu thang na yan ki hat na bo hot na ki Mashibo Mashibo ai lok tu na bo maloi dra
1: Man pham thok te ning thau Chingnari ba panji ra ti kan ta bu si ba gi chai ra pi khe ba duna Bor barwa gi apen boiram lagani Ining thau di bor barwana magi imungi ningol mawani haina khalam gani da ining thau
2: Nayani Rajniti, the Rajniti, Tajabuddha Kak Bentok Loidamani. But the Bobat Hoxing, a puppet Togdok, the Ontok Pangam Baduni, a puppet Rajniti, I never say.
0: Ininto, am I better mark at the base Baruanadi? Why am the Nang Biganu, Hijerambanido Ininto?
2: Karam not to mean the Yang to the lake at the gate. Homely Paki known Ediba Puyakaya, conquered to the critis and dropped palm the yanning the Puyashing waxing in home upon the gipation dona my tartly. Puyas the singer dona a pong pong a lauri. Critis and the board barwa nung supoyana tango on magoma nungisage tomboyo haina. Magi matakta, magi matakta, kanana bu asum na lawa ngamgani. Ngamli ba se, aigi tawin sin malo idra.
1: Ining tau.
0: Sang silak lo. Iti sandana nang bukonong ngasi datang silak padagi, sing na bang akta po.
1: Nate,
0: ining tau gipun silo ikinabo. Nang na ining tau bu si ibiya ba hidak pitak pate. Nanti madumi nampane,
1: nampanati.
0: Nang narani orang di bawah sibu, indah bang sesing ibhambal intu nabra.
1: Nanti,
0: selo, sakau selo.
1: Ening tauret, nanai kamla beribu tazabiu. Ening taugi sana ibhambal kada, tang zelin orang di magi hugi seiting ening tau nampang beri bas.
0: Tang zelin nasi bu tan thok pagi ayapa. Nanai kamla beri ayu izagi ning tau, hugat biroi ning tau, sanaya tang tau tabiroi ning tau.
2: Rani, mama sakli kamla beri ya.
1: Ning tau,
2: nang, nanau simbu, luna sana, loine mira uko. Rani!
1: Matong-natong ibang sidi! Ining tao! Ining tao! Ining
0: tao! Kanina
1: yung tao ibang sidi. Karimataw ko magini ining tao! Mangle! Punawag mangle!
0: Kanina?
1: Laipag may ampum namang! Indra bang sagi mapuno nga ay nakatagre.
0: Kanino? Kanino ay natari ba si mo?
1: Ining tao! Ining tao! O gano ining tao! O gano ining tao! Kaligino adum na tao ni ba dumo ining tao? Ining tau gitawai yau de bang chakse itanung da che na kon jage ko ining tau

0: उमंग कार्यक्रम में पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू, सुजाता साहू जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
1: बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है।
0: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, धन्यवाद। हम इसे एक पर्यावरण संदेश भी कह सकते हैं
1: जी।
0: आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य जिला बालौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी का।
1: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
0: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
1: राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद।
0: और रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू जी।
1: जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश और उत्तर भेजने के लिए।
0: स्वागत है आप सबका हमारी मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के विभिन्न मेलों की।
1: जी हाँ श्रोताओ, कुंभ और पुष्कर जैसे मेलों के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं
0: जी,
1: लेकिन आज हम लेकर आए हैं जानकारी कुछ ऐसे मेलों और उत्सवों की जो लोक संज्ञान में कम हैं, लेकिन उनका सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है।
0: जी हाँ श्रोताओ, ये मेले अपनी अनोखी परंपराओं के कारण बेहद रोचक हैं।
1: जी
0: तो बिमलेश जी, करते हैं शुरुआत, जरा श्रोताओं को ये तो बताएं कि आज हम किस मेले की चर्चा करेंगे।
1: अजीत जी, आज हम चर्चा करेंगे जॉन बील मेले की।
0: जॉन बील मेला
1: जी,
0: बड़ा अपरिचित सा नाम लगता है। हमारे बहुत सारे श्रोता मित्र ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद ये नाम सुना भी ना हो
1: जी।
0: तो अब ये तो बताइए कि ये मेला कहाँ लगता है।
1: अजीत जी, ये भी बताती हूँ, लेकिन इससे पहले कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपसे और हमारे श्रोताओं से भी।
0: जी पूछिए पूछिए।
1: ये बताइए कि जब हम कुछ खरीदने जाते हैं या खरीदारी का माध्यम क्या होता है।
0: ये भी कोई पूछने की बात है। हम मुद्रा या सरल शब्दों में कह लीजिए कि पैसों या रुपयों से खरीदते हैं।
1: बिल्कुल सही, लेकिन अब ये बताइए कि जब प्राचीन काल में मुद्रा नहीं थी तो किस तरह लेन देन करते थे, क्या लेन देन होता ही नहीं था, बताइए बताइए।
0: हाँ विमलेश जी, लेन देन तो होता था, लेकिन जब मुद्रा नहीं थी तो एक तरीका था लेन देन का, लेकिन क्या तरीका था आप बताइए ना।
1: अजीत जी, वो तरीका था वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम, यानी किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना या देना, ये बहुत प्राचीन तरीका था।
0: जी बिल्कुल सही, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हम आज के विषय से भटक गए हैं। कहाँ हम बात कर रहे थे मेले की और कहाँ आगे वस्तु विनिमय पर, अर्थशास्त्र पर।
1: अरे नहीं अजीत जी, हम बिल्कुल विषय से नहीं भटके हैं। यही तो हम श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि आज भी उत्तर पूर्वी राज्य असम में एक ऐसा मेला लगता है जिसे जॉन बील मेला कहते हैं। यहाँ आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा लेन देन होता है। लोग बिना पैसे के एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन करते हैं।
0: अरे वाह, आज की डिजिटल करेंसी के युग में भी वस्तु विनिमय प्रणाली का जीवित रहना सचमुच बड़ी अनूठी बात है।
1: जी
0: विमलेश जी, जरा जॉन बील मेले के बारे में श्रोताओं को विस्तार से बताइए।
1: जी अजीत जी, ये मेला असम के मोरीगांव जिले में हर वर्ष माघ बिहू यानी जनवरी में आयोजित होता है। अब आपकी बारी।
0: जी श्रोताओं, इस मेले में असम और मेघालय की टीवा जनजाति सहित कार्बी आंग्लोंग के जनजातीय या आदिवासी समुदाय भाग लेते हैं।
1: जी हाँ श्रोताओं, पहाड़ों की जनजातियाँ अदरक, हल्दी, शहद और बांस के उत्पाद और जड़ी बूटियाँ और अचार इत्यादि लेकर आते हैं,
0: जबकि मैदानी क्षेत्रों के आदिवासी लोग चावल, मछली, पीठा और अन्य खाद्य सामग्री लेकर आते हैं और इन वस्तुओं का आपस में सीधा आदान प्रदान किया जाता है।
1: जी
0: तो अब बात करते हैं विमलेश जी इसके इतिहास की। तो अब आपकी बारी।
1: श्रोताओ, माना जाता है कि जॉन बील मेले की शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुई थी। शुरुआत में इसका उद्देश्य व्यापार या लेन देन करना नहीं था। इसमें उत्तर पूर्व की पहाड़ी और मैदानी जनजातियों के मुखिया लोग मित्रता, सांस्कृतिक आदान प्रदान और अपने क्षेत्र की समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए जमा होते थे।
0: लेकिन जब लोगों ने देखा कि उनके मुखिया लोग मोरीगांव में जमा होते हैं तो धीरे धीरे वे अपने उत्पाद भी वहां लाने लगे।
1: जी, फिर वहां विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होने लगे जिनमें आदिवासी गीत, संगीत, नृत्य और विशेषकर मोरीगांव की बड़ी झील में मछली पकड़ने की प्रतियोगिता शुरू हुई।
0: बता दें श्रोताओं कि इस मेले का आयोजन तिवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। जनजाति के तत्कालीन राजा और आज की तिथि में मुखिया के संरक्षण में ये मेला आयोजित होता है। मेले के अंतिम दिन एक शानदार रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जो महाभोज के साथ समाप्त होता है।
1: अब ये विश्व का अकेला मेला है जिसमें अभी भी मुद्रा पूर्व परंपरा यानी वस्तु विनिमय प्रणाली को जीवित रखा गया है। ऐसा भी नहीं है कि आधुनिक मुद्रा वहाँ नहीं चलती।

0: लेकिन इस मेले का अनूठापन इसकी वस्तु विनिमय प्रणाली ही है।
1: तो श्रोताओ, ये थी जानकारी अनूठे जोन व्हील मेले की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, जोन व्हील मेला कहाँ और कब मनाया जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: जोन व्हील मेला कहाँ और कब मनाया जाता है?
1: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर, और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और उत्तर व संदेश भेज सकते हैं।
0: फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए श्रोताओं, सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है सांकेन।
0: हिंदी की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम उत्तर पूर्वी भारत के सुरम्य राज्य अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों द्वारा मनाए जाने वाले बौद्ध नववर्ष के त्योहार सांकेन के बारे में मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।

0: आज वल्लरी बहुत उत्साहित है। क्यों? आइए जानते हैं।
1: यमन भैया, यमन भैया, कहाँ हो भैया?
2: यहीं दूसरे कमरे में। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? बड़ी खुश नजर आ रही हो।
1: भैया, खुश होने की बात तो है ही। पता है, पापा का ईमेल आया है।
2: अच्छा, क्या लिखा है?
1: उन्होंने हम सबको अरुणाचल प्रदेश बुलाया है। कितना मजा आएगा। माँ को बताती हूँ। माँ, माँ।
3: साथियों, वल्लरी के पिता वन विभाग में अधिकारी हैं। पिछले दिनों उनका स्थानांतरण अरुणाचल प्रदेश के चौखाम में हो गया था। उन्होंने वहां जाकर अपना कार्यभार संभाला और सब कुछ नियोजित करने के बाद अपने परिवार को थोड़े समय के लिए चौखाम बुलाया है। टिकट भी भेज दिए हैं।
0: वल्लरी, यमन और उनकी माता जी पूरे जोश खरोश के साथ चौखाम जाने की तैयारी कर रहे हैं।
1: भैया, मैं तो ये कपड़े लेके जाऊंगी।
2: मैं भी कुछ गर्म कपड़े रख लेता हूँ।
3: अरे बच्चों, वहाँ इतने अधिक कपड़ों की जरूरत नहीं होगी। कुछ रख लो। चौखाम का मौसम अप्रैल मई महीने में सुखद और हल्का गर्म होता है। हाँ, कभी कभी हल्की बारिश भी हो जाती है। तो चलो बच्चों, जल्दी से तैयारी पक्की कर लो, कल हमारी उड़ान है।
0: नई दिल्ली से उन्होंने भरी उड़ान और पहुंचे डिब्रूगढ़।
3: उन्होंने डिब्रूगढ़ से टैक्सी ली और पहुंच गए चौखाम। टैक्सी स्टैंड पर पिताजी ने सबका स्वागत किया।
0: अरे बेटा वल्लरी, यमन, आजा आजा आजा आजा।
4: नमस्ते पापा।
0: नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हो बेटा आप लोग?
4: ठीक है।
0: और कैसा सफर रहा दिल्ली से डिब्रूगढ़ तक का?
4: बड़ा मजा आया।
0: चलो अब यहाँ और मजा आएगा। चलो सामान उठाओ अपना, टैक्सी पे चलते हैं। आजा आजा आजा। चौखाम पूर्वोत्तर भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो अपनी संस्कृति, बौद्ध परंपरा और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये असम राज्य की सीमा पर है।
3: कहां दिल्ली की भीड़ भरी सड़कें, हॉर्न बजाती हुई कारें और बसें, लोगों की लंबी लंबी कतारें, और कहां चौखाम का खुला वातावरण। जिधर देखो हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल। यहाँ के लोग बहुत विनम्र और हंसमुख हैं।
0: शाम होने में अभी थोड़ा समय था। पूर्वोत्तर में वैसे ही सूरज जल्दी ढल जाता है। वल्लरी के पिताजी के एक मित्र चाउतान जी ने उन्हें सपरिवार अपने घर बुलाया था। उनकी माँ अपनी एक मित्र श्रीमती चौहान से मिलने चली गई थी। जब वे घर पहुंचे तो चाउतान जी ने उनका स्वागत किया। अरे भाई, चावतान जी घर पर हैं क्या?
5: अरे आइए आइए वर्मा जी। नमस्ते नमस्ते।
4: नमस्ते अंकल।
5: नमस्ते। अरे वाह, आप यमन और आप वल्लरी, है ना?
0: बिल्कुल ठीक पहचाना।
5: आइए, स्वागत है आप सबका।
0: धन्यवाद।
5: आपके परिवार को देखकर हमको बहुत अच्छा लगा वर्मा।
0: अरे भाई, हमें भी आपके घर आकर बहुत अच्छा लगा।
1: अंकल, हमारा यहाँ आने का बहुत मन था। बड़ी सुंदर जगह है।
5: थैंक यू।
2: हमारा मन खुश हो गया यहाँ आकर।
5: ओहो। वर्मा जी, मैं आपसे कहता था ना
0: जी,
5: एक बार परिवार को यहाँ बुला लीजिए, जाने का मन नहीं करेगा।
0: बिल्कुल ठीक कहा।
5: अच्छा तो पहले थोड़ा जलपान कर लीजिए, मैं कुछ लेकर आता हूँ।
0: अरे
5: तुम लोग बहुत अच्छे समय पर आए हो। आज हमारा सांखकेन का पर्व जो है।
0: अरे वाह, फिर तो बड़ा मजा आएगा।
1: अच्छा, तभी मैं सोच रही थी कि आज इतनी चहल पहल क्यों है।
0: चौतान जी, मैं भी तो यहाँ नया आई हूँ। सांकेन पर्व के बारे में कुछ और बताइए ना।
5: अरे बताता हूँ वर्मा जी, बताता हूँ, पहले आप लोग नाश्ता तो कीजिए।
2: वाह वाह, कितने स्वादिष्ट है अंकल। ये पकवान तो हमारे लिए बिल्कुल नए है। ये किन चीजों से बने हैं?
5: बेटा, ये जो आप मिठाइयाँ देख रहे हो ना, ये हैं चावल की मिठाइयाँ। और ये पकौड़े, ये हैं बैम्बू शूट्स के पकौड़े। और ये है भाप में पकाई हुई सब्जियों की करी, और ये जो है ये है अरुणाचल की खास चाय। ये सांकेन त्योहार के विशेष पकवान है।
0: अरे वाह वाह वाह भाई, मैं तो चाय पीऊंगा।
1: ये तो बहुत अच्छा था, मुझे बड़ा मजा आया।
5: थैंक यू।
0: अरे भाई चौतान जी, आप तो हमें सांकेन त्योहार के बारे में बताने वाले थे।
5: हाँ हाँ वर्मा जी, सांकेन बौद्ध नया साल है जो 13 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच मनाया जाता है।
0: अच्छा
1: अंकल, क्या क्या होता है इस उत्सव में?
5: बेटा इस उत्सव को ना जल उत्सव भी कहते हैं।
0: जल उत्सव क्यों?
5: वो इसलिए कि आज के दिन भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को पवित्र जल से नहलाया जाता है।
0: अच्छा।
5: इस दिन हम लोग अपने घरों को खूब सजाते हैं, जैसा कि आप इस घर में भी देख रहे हैं।
0: हाँ।
5: और हम लोग नए कपड़े भी पहनते हैं। जी।
2: अरे ये तो बहुत बड़ी शोभा यात्रा है, कितनी भीड़ है।
5: हाँ बेटा, ये शोभा यात्रा पास के बौद्ध विहार जा रही है।
1: तो हम भी चले?
5: हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो आ जाओ।
1: चलो चलो चलो।
3: थोड़ी देर में शोभा यात्रा बौद्ध विहार के पास पहुंची। वहां की जालीदार दीवारें बांस और बांस की खपच्चियों से बनी हुई थी। बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियां लगाई गई थी और खोस खोस कर उन पर रंग बिरंगे फूल सजा दिए गए थे।
0: बौद्ध भिक्षुओं ने मंत्र पढ़ते हुए मूर्तियों को पालकियों से उतारा और उन्हें विहार में रख दिया और उन पर जल चढ़ाने लगे। हंसी खुशी के इस वातावरण में वल्लरी ने देखा कि लोग एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर कर पानी डाल रहे हैं।
6: हैप्पी संकेन।
3: वे एक दूसरे के चेहरों पर चावल का आटा भी लगा रहे हैं। वल्लरी को होली की याद आ गई। उसने चावतान जी से कहा,
1: अंकल लगता है हम लोग होली का त्योहार मना रहे हैं।
0: इतने में किसी ने चावतान जी, वर्मा जी और यमन पर एक बाल्टी पानी उंडेल दिया।
5: अरे।
3: फिर तो लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे और सांकेन मनाते रहे। चावतान अंकल ने बताया कि सांकेन 3 दिनों तक इसी तरह मनाया जाता है।
5: बच्चों, तीसरे दिन बौद्ध भिक्षु इन मूर्तियों को पालकियों में रखकर बौद्ध विहार ले जाएंगे।
1: अच्छा।
5: वहाँ वो मंत्र पढ़ पढ़कर इन मूर्तियों को इनके स्थान पर प्रतिष्ठित कर देंगे।
1: जी अंकल।
5: गांव के लोग तीसरे दिन बौद्ध विहार जाएंगे और बौद्ध भिक्षु उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहेंगे, खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें कोई बीमारी। क्या बोलेंगे?
7: खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें कोई बीमारी।
5: हाँ, और फिर कहेंगे, हिल मिल कर सब नाचें गाएं, नए साल में खुशी मनाएं।
7: हिल मिल कर सब नाचें गाएं, नए साल में खुशी मनाएं।
0: उत्सव समाप्त हो गया था। वल्लरी, यमन और उनके पिताजी घर वापस जा रहे थे। बच्चे सोच रहे थे, कितना सुंदर है हमारा देश। तरह तरह के त्योहार, भाषाएं, संस्कृतियां और लोग, सचमुच विविधताओं का संगम है हमारा भारत।
8: अभी आपने सुनी कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित ये नाट्य प्रस्तुति। अब आपके लिए कुछ करने को। पूर्वोत्तर भारत में मनाए जाने वाले अन्य जनजातीय त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। ये पता कीजिए कि सांगकेन मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, और साथ ही साथ सांगकेन त्योहार पर चावल से बने पकवान एवं मिठाइयों के नाम भी मालूम कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, कलाकार परवेज गौहर, शिमाइला परवेज और राजेश काम्बोज, बाल कलाकार वान्या और सोहम, आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण अरशद अहमद, यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सांग केन। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, और अगला कार्यक्रम है तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर।
3: देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत ये गीत है, जिसे भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान आम जनता द्वारा जलूसों में गाया जाता था। इस गीत के द्वारा देश के करोड़ों लोगों को आजादी की लड़ाई जारी रखने के लिए प्रेरणा मिली।

अभी आप सुन रहे थे ये गीत, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। जी हाँ श्रोताओ, ये गीत आज भी हमें जीवन के प्रति एक नए उत्साह और आत्मविश्वास से भर देता है।

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम क्लैप एंड स्माइल।
2: ये कार्यक्रम बच्चों को सुंदर गीत और संगीत के माध्यम से रोचक गतिविधि कराता है। कार्यक्रम में बच्चों को व्यायाम के महत्व से भी खेल खेल में परिचित कराया गया है और विनम्र व्यवहार का महत्व भी समझाया गया है।
3: क्लैप एंड स्माइल।
4: हेलो फ्रेंड्स।
5: हेलो।
4: आई नो यू डोंट वॉन्ट टू बी सैड। इवन आई डोंट वॉन्ट यू टू बी सैड। So, we will sing the happy song again, but with a difference.

आकाशवाणी इम्फाल होजिक ताबिर से रामायण वारीदा रामायण उत्तरकांड की मनुंग दा रावण दिग्विजय जोमालोय चेतपा वारी लिपि गदबा समुराय लातपम कुंज बिहारी शर्मा।

संसार सागर घूर परित्रयानं जनार्जनं रामायण रामचंद्रायो राम भद्रायो वेदसे रघुनाथायो सीतायो पदे नमो नमो मोकं करोति वचालं पंगुलंघयति जद्गिरिं तमाहं वंदे परमानंद माधवो पंगुर ब्रह्मति ब्रह्मंद मूर्ख वेदार्थ विद्भवे जद कृपाले समात्रेनु वंदितं गुरुमेश्वरं वंदी वैष्णवरी शरण दंडवत प्रणमामि अहम् आहान बदा जगत की मबू और श्री हरि की शरण दा हन हन खुरुम जई जगत की मबू और अवतार ओबीर वे श्री राम सीताराम अनि की शरण द खुरुम जरगा तोल बननाई मम लब ज्ञान मुंगालन बीर ज्ञान दता शिरमोनि मम शिक्षा गुरुदेव की शरंदा तोल बननाई न हन हन खुरुम जई मखा तारक पदा नाम बु सर्वोलो बीर व नाम बु ताबीर व भक्त वैष्णो अहल मन लाई गुरु जोन ख्वाई पुनम की मफम दा हन हन भक्ति कचरी श्री सदा शिवनाहाई तारो दशभुजे दुर्गे एक ही राम नाम जो पिले सस नाम पुइन फले श्री रघुमनि रामचंद्र।

दशभुजे दुर्गे, एक ही राम नाम जो पिले सरस नाम पुइन फले। श्री रघुमनि राम चंद्र की नाम शिव अमुक्तंग सौंजबदा, अतोप देवता अली सिंहम की नाम स्वासंगाक्पा, आराम अयुगों की गुण महिमा निदो मसिदा। वारी ताजरी हिमावान गिरी के मस्याई भी एमा, दशभुजे दुर्गा खुशा तरा लोन जरी हर रग मबुंगो महादेव की मफम दहंगचे। बंगो नारायण रामायण पुराण वो मथंग मथंग ताजरक पद नाराय की दिहे दलेरी ब्रह्म बोध की पाप से फननिंग थी न कोक्षरे। मखा उतर कांद की मनुंदा, आराबोन दिग बिजोई की मनुंद राबोन जमालोई सत्प इधाई मतांगदो नाराय ताजरगी मतम मसिदा। श्री उमापति सदा शिवन हाई तारो प्रिय भगवती दुर्गा, हंद आराबोन दशगरीबो राबोन हैदन कौ घर बराबोन श्यापमगुन कयान धन घरबा, हिंसाव सागई चौख ननब की दमकता निकसान विष सर्व कौब ब्राह्म होगा, अलो नरी हर राबोन कुंभ कर्ण अनि पोक्तन हिंसाव पुनमक्की जाति सिगी चौख ननब सिन घरबा। आराबोन हाइनगाई लेत्रब राबोन सिना, पृथ्वी सर्ग मर्त पताल दीप्तरित नब खंडमापन चौदह हुवोन मरोन तरा मरीश्या, मी लाई हिंसाव पुनमक्सी लोई न बिजोई लाक बनी दो। असिगुम बिजोई सिगी मनुंदा, हंदक अराबोन मान लाइब बिजोये सिदा, जो मालोय चत्पगी मतांग से तारो को हे दुर्गा। मतांग सिदा वारी तारी बा सुरता अनि अदुग बागता अनि वारी लीब अनि, अमना श्री प्रभु राम चंद्र की सभादा अगस्त मुनि ने लीरी हर रग राम अबोन ताब, अमना दुर्गा मान तारी हर रगा भवन महादेव नमनाई दुर्गा दलीर गाब, वारी ताब अनि वारी लीब अनि मतांग सिदले। अगस्त मुनि ना ताबियु हे राम मखागी प्रसंग लीजगे, अराम चंद्र नशु मुनि दे आराबोन मान बिजोई सत पसे मथंग मथंग लाक पदो मधुना। बाली महाराज बु मरुप सानरी हरे रग मधुदगी बाली के कोनुंदगी थोलक पल्लंबी अदो मधुदा इरीन लाई। हारिब मतम मसिदा अगस्त मुनि ना हा हेराम आराबोन महांगा बिजोय सिगी नमक्त इरिये लाक पसी लंबी अदो मधुद इखंग हे खंगौदना नारदरी सी थेंग नहीं। आराबोन मागे तेंगोन के लोई नरी हरे रग लाको मतम नारदरी सी उबदा, अलरमी बराबो न दो मधुन खुदसा तरालो न जरी हर रग नमो नमो हे ऋषि। ऋषि की मफम द भक्ति कचरी है दना, आराबोन नारद की मफम द भक्ति ताए, आराबोन मागी भक्ति यदु उरी हर रग सुर ऋषि नारदना। महाराज मतम चुपद मंगोल उयु मंगोल बी, सुर ऋषि नारदन राबोन बुयेंगे हर रग महाराज हे दस गरीबो हौजिक तेंगोन लुई नरी हर रग लाई बसे कदाई दस कदौड़ी बनो कदाई दिगी लाई बनो। आराबो नरी ऐसे बाली ताऊ की कोनुंग दगी लाक पनी बिजोई सलु बनी ऐ सर्ग दसली हर रग सर्ग बुजोई तौगी है तेन खली सर्ग मर्त पताल मरोन अहुम से ऐन सतन बिजोई तौग दौड़ी बनी। वादु तावद नादरी सीन राबोन बुयेंगे हर गे हे दस गरीबो हे राबोन महाराज, हंद महाराज न सलीब बिजोए सिगे मनुंग द ख्वाई दगी हेन मरु ओइब मफम अमदी महाराज सत्री माने ताक प्यूरी सी कदावाई दनो। जो मालो इद सली हर रगा महाराज, महाराज जो मालो इद सली हर गल जीव गे अवाब से अमुक्तंग कोक तरबो रदी। महाराज की नगुन मरम ओरग जीव के अवाब सोयदन कोकंग मंगमनी श्या नारद ऐन खली ने हेराजन मधुद ओरे दस।

और फंगबन नंगनी परे ननंग अंब सक्षरो हैर मगा धर्मराज जोंदु इरेन हंजन घी मतमदु दे राबोन मानंग अम्मे खल्ल दना मसिद इरेन मयाई कार दन राबोन फाग फाग नूक दना लिरिव जीव पुनमक सी थादोक दना जोंगी दु पुनमक पु अवाब पी मतम सिद श्री रघुमणि रामचंद्र ना अगस्त मुनि बुयंग हरग मुनि दे जो मसी करिगिद बक्ता मशरीरिन जो मुहंजल लीबन हंजल हलीबनो ब्रह्माना अगस्त मुनि ने ताबियु हेराम लेरिब खुशे मनी श्या अमत मांग बयाबनते ब्रह्मासु अलेरिब ब्रह्मान पूर पीघी बदगी अराबोन मासुलेम न मांग बयाद्रवा अदुगा हरिबा दंड मासुलेम न मांग बयाद्रवा अनियश्या मशीन लान हंजन नरी हररेगा अराबोन नंब शक्तन मसीदगी इरेन लेगी अदुना असिगुम्बा अराबोन महाकी बिजोएगी जो मालोद सत्पगी अध्याय से मतांग सिदलो में तोलबन हनाय मूर्खना नसी सोंजरी बनाम सिगी मनुंदा सतन तपद भंगो असोयब अरानम कया यावरबसु ताबिरीब भक्त वैष्णव पुनमंगना नाक पीगनी सिगी मखादला कद अध्याय सिदी सरस्वती की कृपा लैब कनागुम ओ जामन अमु सेवा ओइब ओइरसेनु ननागी दि मतांग सिद सांग ओइचगे ताबिरीब भक्त वैष्णव पुनमंगना रिदि सुद कारुंगिदम सीताराम हाइब नमामृतम सोलि हररगा बी सराम करी पोथाबी गदबोई।

वेस्टर्न म्यूजिक की थोरम ताबिरी थोरम से नुकतुने ताह जारी बर से आकाशवाणी इम्फाल की कंगला चैनल नी हौजिक चैनल ऐसी दपुजा रखली संगनाय रवि सिंह की वारी दा हेलेन केलर अखोई नंगा से मीयोई बामो इना पांग लिब थौ अमेदी ले लिब पुंसी मरेल अखोई द उब गंबा अमेदी ताब गंबा की शक्ति लेरम द्रबदी पांगथोप ngam lamgadra kanagum kharanadi asigumba malem ama wakhal na sagat pakhotna bada ngam lamdabai adubu kanagum kharagina asengba tamjaningai oiba punshi ama oiri hingnari popogatha tarama paltam ngai ngai matam dagi leina amana maram oiraga mit uba amadi khonjil tabagi pangal lerakhidraba अंगपन थलब थौना फरब नुपी अमनी हेलेन केलर हेलेन केलर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अलबामा कौब स्टेट अमद इं लिंगम चनीपाल मरफूद पोखी पोपद मिट उब खोंजिल ताब गमलमलबसु था तरा मापल सुरक्प मतमद लेना मरम हेलेन केलर उब ताब की पांगल मांखिरमी आंग ओरिंगे मतमदा महाकी वाखलोन संसार अमदी फोंगदोकनिंग बा इहुल कया फोंग बंगमदा तोंगान बा पुंसी अमदा हिंगलममे अदुबु मसी पुमनमक इंग्लिशिंग अमा चमापल मरफुतारेता पर्किन्स इंस्टीट्यूशन फॉर द ब्लाइंड दा ओजा ओइबी एनी सलेवन गा थेंगना रुबदगी हेलेन गी पुंसीदा मंगाल नायबा अहोंग बा अमलाखी नोंगमा हेलेन ना एनी सलेवन का लोईन ना हैंडपम अमदगी तारकलीबा अचेन बा इसिंग अदु हेलेन की खुद सादा फाहोलमी हेलेन की खुद नाम अमदना एनी सलेवन ना इसिंग की बनान इंग्राजीदा इबिरमी असिन मरम ओयरगा मकुत फावरीबा सेंस अदुबु इसिंग नी हाई ना खंग बंगा मकपदगी हेलेन की पुंसीदा अचोब संसार अमगी थोंग हांग बगुम थोकी तोान तोान मीयोबी मरी पुकनिंग इहुल वाखलोन कया फोंदोकपगी लंबी अमा साफोंग लखी हेलेन केलर की खंगनिंग हैनिंग लुबगी इथिल अदुना खुनायना सेमलंबा अखनना पिथोरकलब

0: Akashban Infal, Hausik Nung Tilgipung Ani Minit Tara Mangachatle, Delhi Dagi Rileda, Do Peher Samachar Taba Fangbiragani.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सरकार का संकल्प दोहराया। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से 9 लोगों की मौत, कई लोग फंसे, बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और भारत ने एक वाणिज्यिक जहाज पर हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के मामले में रूस के दूत को तलब किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
2: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
1: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन मुक्त व्यापार समझौतों के बारे में भी बात की जो भारत ने कई देशों के साथ किए हैं।
2: प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे, उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा।
1: मंगल मिलन नाम से आयोजित बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया। बैठक के बाद एनडीए सांसदों ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार देश में परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के सरकार के संकल्प को दोहराया।
3: नीट को लेकर के उन्होंने कहा कि जो गड़बड़ी हुई लोग पकड़े गए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करना है और आगे बेहतर से बेहतर व्यवस्था होगी इसको सुनिश्चित किया जा चुका है और यही कारण है कि फिर से जो परीक्षा नीट की हुई है बहुत ही बेहतर तरीके से हुई।
1: एनडीए संसदीय दल की बैठक में पहली बार शामिल हुए भाजपा के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के साथ मजबूती से खड़ी है।
4: हर एक ने अपने तरीके से बात करनी है पर भारत एक इतना बड़ा विशाल देश है और तो भारत के युवा समझदार युवा उनमें पूरा पोटेंशियल है, वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो राष्ट्रहित में ना हो।
1: भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया।
5: हम अपने आप में मंगल भावना के साथ हम आगे बढ़ें, यह प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए संकल्पित होने का सभी अपने माननीय सांसदों को यह आग्रह और निर्देश दिया है। इस 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है तो हमें मंगल कामनाओं के साथ ही काम करना पड़ेगा।
1: संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है। दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर हंगामे के बीच संसद की अलग अलग समितियों के चुनाव के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किए गए। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। इसके बावजूद विपक्षी सदस्य नीट तथा विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर नारेबाजी करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में 12 बजे के स्थगन के बाद बैठक फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन विपक्ष ने उनकी बात नहीं मानी। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे को लेकर कल नई दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। इसके बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और कहा कि विपक्ष विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है। संसद के बाहर श्री गांधी ने कहा कि मुद्दा विद्यार्थियों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा है।
6: इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है। ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे। दैट इज ऑल दे आर सेइंग, नथिंग रॉन्ग विद इट।
1: सरकार ने उन कई सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि कल दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के दौरान एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली में प्रदर्शन से संबंधित कोई मौत नहीं हुई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सिक्किम में नामची जिले में एनएचपीसी तिस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि अब तक 11 शव बरामद किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
7: बारिश और खराब मौसम के बावजूद रेस्क्यू टीम फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित निकलने की पूरी कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि समरदंग में 7 किलोमीटर लंबी टनल के अंदर कम से कम 25 लोग फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांगुले से बात की और हालात से निपटने के लिए हर तरह की मदद का भरोसा दिया। इस बीच जिला प्रशासन ने अब तक 7 शवों की पहचान कर ली है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखने के लिए जिला के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश में चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी और कुल्लू जिलों में 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है।
8: किन्नौर जिला के करछम बांध और सिरमौर जिला में गिरी जटोन बांध से अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। स्थानीय प्रशासन द्वारा इन नदियों के साथ लगते इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने व समय समय पर जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। उधर किन्नौर जिला के शलखर और समदो में भूस्खलन और चट्टाने गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर यातायात बाधित हो गया है। वहीं लाहौल स्पीति जिला में भी जहालमा नाले में आई बाढ़ के कारण संपर्क सड़क बह जाने से यातायात बंद है। शिमला जिला के ठियोग उपमंडल में 16 सड़क संपर्क मार्ग भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हैं और चंबा जिला के लाहड़ू नूरपुर मुख्य सड़क में भी टिक्कर गलाधार में भारी भूस्खलन से मार्ग अवरुद्ध हुआ है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उत्तराखंड में बारिश और यात्रा मार्गों पर भूस्खलन की आशंका के कारण कल स्थगित की गई चार धाम यात्रा आज फिर शुरू हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
9: चारधाम यात्रा का संचालन जिला प्रशासन, पुलिस, एसटीआरएफ और संबंधित विभागों के समन्वय से किया जा रहा है। यात्रा मार्गों की लगातार निगरानी की जा रही है और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि यदि भारी बारिश, भूस्खलन या अन्य कारणों से किसी स्थान पर यात्रा मार्ग अस्थायी रूप से बाधित हो तो वे प्रशासन द्वारा निर्धारित सुरक्षित स्थानों पर होल्डिंग एरिया में ही रुके। सभी संबंधित विभागों को मौसम और यात्रा मार्गों की स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और मुजफ्फराबाद में तेज से बहुत तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, आंध्रिक कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में भी 24 तारीख तक ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मासिक आर्थिक सहायता को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में राज्य सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई सहायता राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले के संबंध में आज दिल्ली में रूस के प्रभारी राजदूत व्लादिमीर लादानोव को तलब किया। 19 जुलाई को इस जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीय मारे गए थे। हमले की कड़ी निंदा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा और स्थिरता कमजोर करते हैं। मंत्रालय ने बताया कि श्री लादानोव से कहा गया कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना और इसके कारण निर्दोष नागरिकों की जान जाना स्वीकार्य नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय आतंकवादी संगठन ISIS में भर्ती से जुड़े मामले में बेंगलुरु में 8 परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। इसमें इकरा वेलफेयर ट्रस्ट, गाइडेंस फॉर मैनकाइंड और बेंगलुरु स्थित अन्य व्यक्ति शामिल हैं। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्योडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में नियामक स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के साथ मिलकर लकाडोंग हल्दी मिशन गोल्डन स्पाइस का शुभारंभ किया। मिशन गोल्डन स्पाइस पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए शुरू

की गई एक प्रमुख और महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसकी लागत 175 करोड़ रुपए से अधिक है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति ने अरावली पर्वतमाला से संबंधित मामलों पर जनता से राय मांगी है। समिति 31 अगस्त से पहले सर्वोच्च न्यायालय को अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि इच्छुक व्यक्ति दस्तावेजी साक्ष्य और अन्य सत्यापन योग्य सामग्री के साथ अपनी राय msHPC@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से 3 सप्ताह के अंदर भेज सकते हैं। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर के सत्र में गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 231 अंक गिरकर 77,478 पर और निफ्टी 52 अंक गिरकर 24,186 पर आ गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल का दौरा किया और वहां डॉक्टरों के साथ बैठक की। उन्होंने नीट यूजी 2026 का पेपर लीक होने के आरोपों को लेकर कल राजधानी में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए लोगों की स्थिति का भी जायजा लिया। श्री नड्डा ने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का भी दौरा किया और वहां भर्ती घायल प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सरकार का संकल्प दोहराया। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। सिक्किम के नामचे जिले में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से 11 लोगों की मौत, कई लोग फंसे, बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और भारत ने एक वाणिज्यिक जहाज पर हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के मामले में रूस के दूत को तलब किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी इम्फाल केंद्र का कंगला चैनल है। मीडियम वेव 340.1 मीटर अर्थात 882 किलोहर्ट्ज़ पर प्रसारित। फौज भाइयों के मनोरंजन पर आधारित हमारा दैनिक कार्यक्रम अब आरंभ होता है।

कार्यक्रम महफिल में प्रस्तुत है फौज भाइयों के लिए कुछ गजल। पहला नगमा है अमित कुमार की आवाज में फिल्म खेल से, जावेद अख्तर के बोल और राजेश रोशन द्वारा संगीत।

सारेगामा इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित। ये गीत है जगजीत सिंह और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। साहित कबीर द्वारा लिखित और जगजीत सिंह की संगीत निर्देशन में ये गीत है फौज भाइयों के लिए।

कार्यक्रम में ये अगला गज़ल है नयारा नूर की आवाज़ में, उन्हीं की ही लेखन और उन्हीं के संगीत में ये गज़ल है फौज भाइयों के लिए।

ये प्रसारण है आकाशवाणी इम्फाल के कंगला चैनल द्वारा और आप सुन रहे हैं फौज भाइयों के दैनिक कार्यक्रम में महफिल। और महफिल के अंतर्गत ये अगला गजल है टी सीरीज के बैनर तले बनी हुई ये गजल है जावेद अख्तर और अलका याग्निक की आवाज़ों में, जावेद अख्तर के बोल और भूषण दुआ के संगीत में ये गजल है।

मोहब्बत पलकों पे कितने हसीन ख्वाब सजाती है, फूलों से महकते ख्वाब, सितारों से जगमगाते ख्वाब, शबनम से बरसते ख्वाब। फिर कभी यूं भी होता है कि पलकों की डालियों से ख्वाबों के सारे परिंदे उड़ जाते हैं और आँखें हैरान सी रह जाती हैं।

तुमसे मिलकर तुम्हें भुलाना मुश्किल है आसान नहीं। तुमसे मिलकर तुम्हें भुलाना मुश्किल है आसान नहीं। हो दीवाने दिल को समझाना मुश्किल है आसान नहीं। तुमसे मिलकर तुम्हें भुलाना मुश्किल है आसान नहीं। लता मंगेशकर की गायन में ये गज़ल है दिल कहीं होश कहीं एल्बम से। नीदा फाजली के कलाम पर ये गीत और संगीतकार है आदेश श्रीवास्तव।

फाउच की थोरम ताबिरे थोरम संदोक तुना तान जारी बसी आकाशवाणी इम्फाल की कंगला चैनल ने हौजिक चैनल असी द लौबी रसे चिंगलोन की सैरोल सैरोल की अहान बदा ताबिर रसे एस थांगशान लियोन अमदी मपांग सकप आईमोल लाइसोले सही।

0: आकाशवाणी इम्फाल पो मई भी शो जही पाविने पोलिना ने आशा सा सवे
1: कलो शो रे जाजे पो मई भी प्रोग्राम ही है गानो दिले भई वजनो
0: रे रे कैसु वा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स है दाई टिजु पोपिकाओ
1: न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हने है जी तो ना मही नंगाओ है न्यूरो इस पैखाओ पैखाओ वे डेवलपमेंट सो तले जी ना मै वे पैखाओ डेवलपमेंट सो तले जी ही नो हाली प्रॉब्लम नि बुरे रेजा ना मै नो सल से जो दोलो से जो ही प्रॉब्लम पाता कंडीशन ता ही नो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ध्यान कुए
0: इतनी दाइसवानी ची बी है ना न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जो है ना है सुमोशे फामोशे क्यूमोशे है ना है पोविका
1: जी तो जो क्लिनिकल प्रैक्टिस ही जी तो डिस्ट्रिक्ट ही जो बा ना मैं है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है पुतांग ओए नो सोलो चे मो देवा ना लहो ना मैं है लाफालो ना बा तालो ना बा ती ते थे लियो तालो बले रानो खो को आनो मा प्रॉब्लम लिको बुरे रस आबा मही पाओ पाशी मही गाँव शो तीजो नो दिल्ली सो तानो सा ट्रीटमेंट सो तालो मोहिन ना मैं है मैजन नो तालो रे वे पॉसिबिलिटी खरा जी पे खाओ है पोस ही न पोंगो को ते है लॉस ऑन इम्प्रूवमेंट ऑल ओवर रे वे कैपेसिटी बोए नो ट्रीटमेंट सा ताबे मो पे दोबे मो पे इम्प्रूवमेंट है गाँव मानो ना मैं है मैजन नो ता खरा ऐसा नो है टॉपिक है ना है जी तो फान डिस्कस हो दिनी जी तो सोसाइटी ही ये जो नो जी तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर वे टॉपिक है ना जो डिस्कस हुए
0: न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स है ना बिजु मोमा ही तो नहीं गौज सोसाइटी ही का बने ना मैं ही और हमें है कि सो फाना जो ये का बने गौले जो है ना वो था
1: न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ही नो टाइप खाए बोए नो जी तो नो जी तो सोसाइटी नो पो खा अदाई जी पो नो है अली नो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नेक्स्ट ने नो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर अली ने नो ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर अली नो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर ती तो अदा है कॉमन तो नो है ती तो अली ली जी नो ती एक्सप्लेन सो ना इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज ना मैं ला पोव हिंसा फिन सदो दौजद ला नो पोव हिंसा फिन बलो सरी जखलो सरी ला खोदो तोलो सरी ना थोलो सरी तीन ता है ला वे पोव हिंसा फिन सोलो सै सोलो सो सखो तेलो हान मैजन वैप हो दबे जी तवे सोसाइटी ही है है ना पै खाओ तीन चेक तो मोए ये तलिया बू द बोए तीन ता कंडीशन नो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी रे को है अली ने से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम से ना मही से देखा ना ले

아이들 소이가 와 아이들은 아이기 군비를 아장마 가이다 소이가 와 아이들은

बार घटाएं छा तो जाती हैं लेकिन बरसती नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना कि जिंदगी में मौसमों का जो इम्तहान होता है उसका दौर कभी ख़त्म नहीं होता, मुसलसल जारी ही रहता है। और ऐसे में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है तो वो है मोहब्बत, और केवल मोहब्बत। वो बहुत खुशनसीब होते हैं जिन्हें कम से कम इम्तहानों के बाद उनका प्यार नसीब तो होता है। कुछ ऐसी ही कहानी है फिल्म मैंने प्यार किया की। यूं तो इस फिल्म के सभी गाने सुपर डुपर हिट हुए थे लेकिन एक गाने की महक सीधे दिल में उतरती है। दरअसल इसमें भोजपुरी बोली की मिठास और शारदा सिन्हा की मखमली आवाज का संगम प्यार का वो अनूठा रूहानी सफर हमें मुकाम देता है, हमें वो सफर देता है और उस सफर पर ले जाता है जहां बस दिल यही कहता है। क्या कहता है सुनते हैं इस गीत में।

है ना, उसकी सारी बलाएं ले लेने का मन करता है। जाने क्या शय है ये मोहब्बत, कोई रोग है, नशा है, बला है या कोई आदत। जिसे लग जाए ना, उससे फिर सारी बलाएं खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। आंखों में ख्वाब महकते हैं, धड़कनों पर सरगम मचलती है और बिना घुंघरू के धड़कनों पर एक सरगम मचलती है और फिर बिना घुंघरू के कदम खुद ब खुद थिरक उठते हैं। इस तरह सरगम फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में आपके लिए।

सरगम का गीत आप सुन रहे हैं। इस फिल्म में जया प्रदा ने एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया जो बोल और सुन नहीं सकती। एक गूंगी बहरी लड़की के दिल की दास्तां को जया प्रदा ने पर्दे पर जीवंत किया और बिना एक भी शब्द बोले सिने प्रेमियों के दिलों पर एक गहरी छाप छोड़ दी। ये फिल्म उनकी सुपरहिट तेलुगु फिल्म सिरी सिरी मोवा की हिंदी रीमेक रही और इसी के जरिए जया प्रदा ने अब हिंदी फिल्मों में कदम रखा और बिना एक भी डायलॉग बोले अपनी खूबसूरत अदाकारी और बेहद खूबसूरत डांस के जरिए सभी का दिल

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। कार्यक्रम चल रहा है हर सिंगार और आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ कुसुम। अमोरे मियो डोई सेई तो टियाइस्टो सरकेंडो टाइसोरो मियो, ये इटालियन भाषा की लाइन है। इसका मतलब है मेरे प्यार तुम कहाँ हो, मेरे खजाने मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। अमिताभ बच्चन और जीनत अमान इटली के वेनिस ग्रैंड कैनाल में एक शानदार गोंडोला पर सवार हैं। गोंडोला वेनिस की लंबी संकरी सुंदर लकड़ी की एक शानदार नाव होती है जो वहां के कैनाल में चलाने के लिए डिजाइन की गई है। इसे चलाने वाले नाविक को गोंडोलियर कहा जाता है। गोंडोला वेनिस शहर की पहचान मानी जाती है। ये गीत वहीं पर फिल्माया गया है। गीत में जो गोंडोलियर है वो ये लाइन गा रहा है और गीत के बीच में वो एक और जगह गाता है, अमोरे मियो इल टेम्पो वोला प्रेंडिलो प्रेंडिलो अमोरे मियो। इसका मतलब है मेरे प्रिय समय उड़ जाता है, इसे पकड़ लो मेरे प्रिय। कितनी प्यारी सीख छिपी है ना इस गीत में। इस गीत को आवाज दी है आशा भोसले, अमिताभ बच्चन और इटालियन भाषा में शरद कुमार ने। फिल्म का नाम द ग्रेट गैम्बलर। सुनते हैं गीत।

इसी गीत के साथ ही हर सिंगार यहीं तक, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में इस चैनल पर आप सुनेंगे हिंदी और इंग्लिश में बारी बारी से समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए लागू प्रवर्तन उपायों की समीक्षा की। प्रवर्तन कार्यबल की बैठक के दौरान आयोग ने बताया कि उसने उड़न दस्तों ने पहली से 13 जुलाई के बीच 175 निरीक्षण किए। इनमें निर्माण और विध्वंस स्थलों, औद्योगिक इकाइयों तथा डीजल जनरेटर सेट से संबंधित गतिविधियों का निरीक्षण शामिल है। युवा कार्य विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी 2026 का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इससे देश भर के युवाओं को भारत के राष्ट्रीय ध्वज तथा उसके महत्व के बारे में अपनी समझ को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने कहा है कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं में भारत के राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपिये में राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया, तो वहीं अमेरिका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठकें शुरू की। ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी है। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari. The government today said it is ready to hold discussion in Parliament on NEET paper leak case and other related issues. Talking to media in New Delhi this evening, Union Minister Jitendra Singh accused Leader of Opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, of deviating from his earlier demand of having the discussion over NEET-related issues despite government assurance.
3: It was conveyed that on behalf of the government, I could assure Rahul Gandhiji that government is ready to have a detailed discussion on NEET-related agitation, protest, also on all the other issues related to NEET. When I went back to Rahulji with this message, he said no, but I also want the resignation of the education minister. Then I politely tried to submit before him. I said, look here, this is not done, because just a few minutes back you told me that if I got the assurance from the government, you would call off your dharna immediately, but now you're saying no.
2: Earlier in the day, Congress President Mallikarjun Kharge, Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra, along with other party members, staged a protest demanding discussion on the NEET issue. Union Minister Jitendra Singh and Union Home Secretary Govind Mohan met the Congress leaders at the protest site at Lok Kalyan Marg. Meanwhile, in the Parliament, both Lok Sabha and Rajya Sabha were adjourned for the day following repeated disruptions by opposition members over several issues, including the NEET paper leak case today. Prime Minister Narendra Modi has vowed strict action against those involved in the recent NEET examination paper leak case and safeguarding the interests of the country's youth. He said the government is taking several measures to prevent such incidents. Mr. Modi said this while addressing the National Democratic Alliance NDA Parliamentary Party meeting, now also known as Mangal Milan, at Parliament House complex today. Talking to media, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said during the meeting, Prime Minister Modi called for coordinated efforts by all stakeholders to prevent paper leaks in future examinations across the country. Union Health Minister J.P. Nadda today visited Dr. Ram Manohar Lohia Hospital in New Delhi and reviewed the condition of those injured during yesterday's protest in the national capital over the alleged NEET UG exam paper leak. The minister also held a meeting with the doctors at the hospital. Mr. Nadda also visited Lady Harding Medical College and Hospital and met the injured protesters who are admitted there. Delhi police released all opposition leaders, including senior Congress leaders Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra and Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav, after they were detained from the protest site near Lok Kalyan Marg. They were protesting over the NEET paper leak issue. BJP today criticised Leader of Opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi for staging a protest at Lok Kalyan Marg, saying that the conduct displayed by him is entirely unbecoming and condemnable. Talking to the media in New Delhi, BJP President Nitin Naveen said that today's incident is unfortunate and termed it a dark day in India's political history. He also said that when the government accepted the conditions of the Congress on the NEET paper leak issue, Rahul Gandhi backtracked from his earlier demand, which reflects his immaturity. Mr. Naveen also appealed to the opposition parties, including the Congress, stating that the government is ready for any kind of discussion in Parliament. He added that the people of the country stand with Prime Minister Narendra Modi. President Draupadi Murmu today said India and North Macedonia have agreed to enhance trade and investment while expanding cooperation in key sectors. President Murmu was addressing the media in Skopje after holding talks with her North Macedonian counterpart Gordana Sianoska Davkova. Later, addressing the Assembly of North Macedonia, President Murmu conveyed the goodwill of 1.4 billion Indians. She described North Macedonia as an important partner in building a stable, multipolar and prosperous global future. After concluding her visit to North Macedonia, she will travel to Romania. Hockey India has announced the 20-member squad for the upcoming FIH Men's World Cup in Belgium and the Netherlands to be held from the 15th of next month. Ace defender and drag flicker Harmanpreet Singh will lead the Indian side. And that is the end of this news bulletin.
4: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. I'm Sarabjeet Kaur with my co-anchor Amit Goyal.
1: नमस्कार. मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है. देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों और शेयर बाजार की हलचल पर चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक पत्रकार विशाल दहिया. विशाल, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: नमस्कार. धन्यवाद अमित जी.
1: सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ सरबजीत.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस फॉल, सेंसेक्स ड्रॉप्स नियरली 250 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 24,188. मोस्ट एशियन स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड इन पॉजिटिव टेरिटरी एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज.
1: आर्थिक सुर्खियों में घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट, सेंसेक्स लगभग 250 अंक लुढ़का, निफ्टी 24,188 के स्तर पर बंद. प्रमुख एशियाई शेयर बाजारों में मजबूती का रुझान और वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी.

0: And before we go just any further in the program, may we once again remind our listeners, views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We also advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले नजर डालते हैं शेयर बाजार पर. घरेलू शेयर सूचकांक आज भी मंदी के दबाव में रहे. बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.3% के नुकसान से 238 अंक गिरकर 77,470 के स्तर पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.2% की गिरावट से 51 अंक गिरकर 24,188 के स्तर पर दर्ज हुआ. वैश्विक परिस्थितियों और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण कारोबार की शुरुआत में ही निवेशक सतर्क बने रहे. पूरे सत्र में दोनों सूचकांक गिरावट के दायरे में ही कारोबार करते नजर आए. हालांकि ऐसी एनएससी मिड कैप सूचकांक में 0.3% और एनएससी स्मॉल कैप सूचकांक में 0.5% की बढ़त दर्ज हुई.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडेक्स एंडेड इन नेगेटिव जोन टुडे. द सेंसेक्स डिक्लाइंड 238 पॉइंट्स और 0.3% टू क्लोज एट 77,470. The Nifty lost 51 points or 0.2% to settle at 24,188. Earlier, markets opened on a flat note as investors remained cautious amid geopolitical uncertainties and elevated crude oil prices. Both the indices traded with a negative bias for most of the range-bound session today. However, in the broader market on the National Stock Exchange, Mid-cap 100 index rose 0.3% and small-cap 100 index added over 0.5%.
1: हालांकि सेंसेक्स पैक की 30 में से 21 कंपनियों में आज मजबूती दर्ज हुई. बढ़त वाले शेयरों में बजाज फिनसर्व 2%, इंडिगो 1.6% और अल्ट्राटेक सीमेंट 1.4% प्रमुख रहे. गिरावट वाले शेयरों में एचडीएफसी बैंक 2.1%, रिलायंस तथा स्टेट बैंक लगभग 1.5% और टीसीएस 1.3% के नुकसान से बंद हुए.
0: इन द सेक्टोरल इंडेक्सेस ऑन द बीएससी, 13 out of 25 sectors ended in the negative zone. Among the top laggards, PSU banks dropped 0.8%, focused IT as well as IT slipped almost 0.7%, and top 10 bank index lost over 0.5%. In contrast, mid-small private banks quality tilt jumped more than 2.9%, Reality rose 1.1%, and commodities added 1%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,188 advanced, 2,021 companies declined and 190 remained unchanged. Vishal, the Indian stock market closed lower for the second consecutive session today. What were the reasons behind today's decline?
2: Well, largely, I would say that, you know, they're staying range-bound, both the Nifty and the Sensex as well. But yes, there is a marginal decline now. There's not much positive sentiment to go on. As I've been saying time and again, the markets do operate on sentiments, and those sentiments create momentums in the market, in the both negative and the positive, you know, category as well. But over the past, you know, 3-4 days, there has not been any huge sentiment which has been created. Although, and this one is a big although, because the foreign currency figures which have come in, those are really positive. And that impact is seen on the status of the Indian rupee as well. So that is there, and that is going to build the momentum in the next few sessions. But nothing much more stronger to come by as of now. I think we should wait and watch as the market looks like is waiting and watching for the results of the June quarter as well. They've started trickling in. So far, so good. But nothing extraordinary, I would say, to give that push to the market. That's one. Apart from that, the West Asia conflict, that is Iran versus US, that is something which is again flared up. And that flare up, although the crude oil prices are rising, but they're a bit steady. You know, the rise is not very sharp. And the overall sentiment in terms of, you know, both sides again confronting each other in the battleground is something which doesn't augur well for the energy sector. So there is some palpable, sentiment which is there in the market, but the market is yet to, try and understand whether it goes towards the negative end or it goes towards the positive end. Perhaps more positive results coming in from the June quarter. That's one. And two, as we move forward, we might see the impact of the money which has come in, the foreign currency which has been accumulated. Once that starts circulating in the system, we'll get to see a little bit more positive impact there.
1: विशाल, आपने चर्चा करी रुपए के बारे में, तो पहले मैं रुपए की जानकारी दे दूं अपने श्रोताओं को भी और आपको भी। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपए आज 21 पैसे की बढ़त से 96.24 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। अब अगर हम वापस से घरेलू शेयर बाजार की बात करते हैं, आपने कहा बाजार रेंज बाउंड बना हुआ है, ट्रिगर की आपने बात करी, क्या बाजार में देखिए अगर हम ओवरऑल जो सेंटीमेंट्स की बात करते हैं, तकरीबन 2200 कंपनियों के शेयर आज पॉजिटिव में रहे, लेकिन तकरीबन 2021 कंपनियों लगभग लगभग बराबर से ही रहे, और मोटे तौर पे अगर सेंसेक्स पैक की बात करते हैं तो 30 में से 21 कंपनियां पॉजिटिव में। हालांकि अगर आंकड़ों को देखें तो शायद जो सेंसेक्स के आंकड़े हैं वो वेटेज की वजह से हमको नेगेटिव में नज़र आ रहे हैं। क्या बाजार कुछ अभी जो चलने के लिए जो आप ट्रिगर की बात कर रहे हैं वो ट्रिगर कहाँ छुपा हुआ है या कहाँ दबा हुआ है या क्यों नहीं आ पा रहा?
2: देखिए, बाजार हमेशा दो तरह के ट्रिगर्स पे काम करता है। पहला ट्रिगर आंकड़ों का ट्रिगर है, क्या कुछ बेहतरीन आंकड़े आ रहे हैं। जब हम आंकड़ों की बात करते हैं तो इन्फ्लेशन के आंकड़े हों, ग्रोथ के आंकड़े हों, एम्प्लॉयमेंट नंबर्स के आंकड़े हों, इन्वेस्टमेंट के आंकड़े हों, और ये वो समय नहीं है जब कुछ आंकड़े आ रहे हों या फिर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में कोई फैसला लिया गया हो या किसी और सेंट्रल बैंक ने कोई फैसला लिया हो। दूसरा ट्रिगर जिस पे मार्केट काम करता है वो है इमीडिएट बिग इवेंट्स, मतलब क्या हलचल हो रही है देश में, विदेशों में, आपसी जो कॉन्फ्लिक्ट जिसकी हम बात करते रहे हैं। तो इसीलिए ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लगभग पिछले 3-4 दिन से, बल्कि उससे ज़्यादा समय से ही हम मान सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर मार्केट के पास नहीं है। लेकिन आपने अलग अलग सेक्टर्स की बात की, आपने अलग अलग सेगमेंट्स की बात की, अगर उस लिहाज से थोड़ी सी फौरी तौर पर नज़र डाल के देखें तो समझ आएगा कि आज का जो सेशन था उसमें IT और मेटल्स की परफॉर्मेंस थोड़ी सी कमज़ोर रही, जिस वजह से मार्केट पर असर दिखाई दिया। उसके अलावा बैंकिंग की अगर बात करें तो आज निफ्टी बैंकिंग इंट्राडे ट्रेडिंग में लगभग मेरे पिछले कुछ दिनों के मुकाबले देखा जाए तो सबसे ऊंचे स्तर पर गया था। लेकिन वहीं अगर थोड़ा सा परफॉर्मेंस की तरफ नज़र डालें तो जो बैंकिंग सेक्टर के जो कई बड़े प्लेयर हैं उनमें से एक दो की परफॉर्मेंस कोई इतनी खास अच्छी नहीं थी। लेकिन वहीं फिर अगर उसके बनिस्बत थोड़ा सा अगर जून जो क्वार्टर है उसके आंकड़ों की नज़र उसकी तरफ देखें तो कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ठीक ठाक परफॉर्मेंस की है। तो वो एक जिसे एक स्पार्क जिसे कहा जाए, चिंगारी जिसे कहा जाए, वो चिंगारी अभी शायद दिख नहीं रही है, कहीं दबी हुई है। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा और 2-4 दिन का इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि कोई ज़्यादा वॉलीटिलिटी मार्केट में नहीं है। ऐसा नहीं है कि मार्केट 4 दिन पहले 5,000 अंक ऊपर गया था और आज जो है 2,000 अंक नीचे चला गया है। लगभग 100-200 अंक इधर से उधर हो रहा है, और वो भी एक स्पेसिफिक सेक्टर में नहीं हो रहा है, कभी कहीं, कभी ऊपर, कभी नीचे।
1: तो क्या ये माना जाए कि बाजार में मतलब भरोसा तो है, लेकिन वो भरोसा अभी बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं जगा पा रहा?
2: जी बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि जो बाजार के मझे हुए खिलाड़ी हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो सब इंतजार कर रहे हैं, शायद टटोल रहे हैं, देख रहे हैं, आंकड़ों को पढ़ रहे हैं। जून क्वार्टर के आंकड़े जो आ रहे हैं उनकी तरफ नज़र है, सरकार की जो पॉलिसीज़ नीतियां जो है उनके क्या फ्यूचर इंपैक्ट हो सकता है उस पर नज़र है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो कॉन्फ्लिक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें किस तरह का मोड आ सकता है उस पर एक नज़र है।
1: इसके आपने बात करी सरकार के जो नतीजे हैं, देखिए सरकार ने दबे तौर पर ही या सीधे सीधे ना सही मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के आंकड़ों को देखते हुए उन्होंने MSME के लिए ECLGS स्कीम वापस से लागू करी जो कोरोना के समय पर लागू की गई थी। क्या इस तरह की चीजें, ब्याज दरें लगभग लगभग अपने इस जगह पे स्थिर हैं या उसमें कहीं ना कहीं और गिरावट ही है। बैंकों ने भी अपने ब्याज दरों में, एक आध बैंक ने कुछ 5-10 पैसे का जरूर इजाफा किया है, अदरवाइज नहीं है। क्या ये सारी चीजें उद्योग जगत के लिए या जो हमारे मझोले स्तर हैं, एमएसएमई सेक्टर है जहां से बड़ी मात्रा में हमको रोजगार भी मिलता है और उत्पादन भी मिलता है, उनको रिवाइव करने की एक सधी हुई का प्रयास है जिसका असर देखने को मिलेगा? आपने बात करी कि पहली तिमाही के बहुत सकारात्मक या बहुत उम्मीद वाले नतीजे नहीं आ पाए, ऐसी स्थिति में ये नतीजे कुछ या ये कदम जो हैं वो कुछ स्पार्क पैदा करने में सक्षम होंगे?
2: जी बिल्कुल, और ये एक, इसे मैं टू प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी कहूँगा, क्योंकि केवल और नतीजे सकारात्मक जरूर है लेकिन वही आपने कहा कि वो चिंगारी नहीं पैदा कर पा रहे हैं, लेकिन ये एक टू प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि सरकार की जो योजनाएं हैं उस पर बाजार की नज़र जरूर है, और एमएसएमई सेक्टर को इस तरह का और बढ़ावा देना, इस तरह की स्कीम्स लेके आना, उसको ना केवल डोमेस्टिक लिहाज से बल्कि हमको इंटरनेशनल नज़रिए से भी इसको देखना पड़ेगा। हमने हाल फिलहाल में कई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं अलग अलग देशों के साथ, यानी कि हम अपना सामान बाहर भेज पाएँ, हमारे सामान की वैल्यू बाहर ज़्यादा हो, और उसके लिए एमएसएमई सेक्टर एक बैकबोन की तरह काम करता है, ना केवल इंटरनल सप्लाई के लिए बल्कि हम जब एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो उसके लिए भी, तो उसको बढ़ावा देना लाजमी है, और इसीलिए सरकार की तरफ से बार बार इस तरह का इंटरवेंशन होता है ख़ासतौर पर एमएसएमई सेक्टर के लिए, तो उसके नतीजे भी बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। बहुत जल्द से मेरा मतलब 3 से 6 महीने का समय हमें लेकर चलना चाहिए।
1: एक चीज और संक्षेप में यहाँ आपसे मैं जानना चाहूंगा, एमएसएमई सेक्टर के लिए इतनी बात करी, ब्याज दरें लगभग लगभग अपनी जगह पे स्थिर हैं, और अब वो कहाँ, मानसून भी शुरुआती लड़खड़ाते कदम के बाद कहीं ना कहीं सधा हुआ नजर आना शुरू हो गया है, उसके सेक्टर में थोड़ी सी शुरुआती कमी नजर आई थी, ये सारे सेक्टर अभी भी मिलके वो स्पार्क जगाने में क्यों नहीं सक्षम हो पा रहे?
2: देखिए, क्यों का जवाब तो अमित जी थोड़ा मुश्किल नहीं है मैं कहूंगा, लेकिन क्यों का जवाब बहुत स्पेकुलेटिव हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हालांकि आपने मानसून का जिक्र किया, मुझे लगता है कि थोड़ी सी, जैसा कि आपने कहा कि शुरुआती दौर में मानसून लड़खड़ाई जरूर है, अब थोड़ा सा जरूर जैसे कहा जाए पटरी पर मामला है, लेकिन डेफिसिट जो है उसको भी कवर करना जरूरी रहेगा, और मानसून हमारे देश में खासतौर पर कृषि क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी है, और कृषि क्षेत्र की ग्रोथ से और भी कई सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम रहेगा, और इसीलिए मैंने कहा कि सरकार की जो पॉलिसी होंगी, सरकार के जो फैसले होंगे, उन पर जरूर इन्वेस्टर्स की नजर पैनी बनी रहेगी, क्योंकि कदम दर कदम जो पॉलिसीज हैं उनको थोड़ा सा डायनेमिक जिस तरह से रखा गया है, उसी डायनेमिज्म की जो उम्मीद है वो शायद बाजार को, वो शायद इन्वेस्टर्स को हमेशा हर सेक्टर में बनी रहती है, क्योंकि बाजार की उम्मीद हमेशा रहती है कि अच्छा कहाँ मिलेगा।
1: चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो मानसून सत्र, जो आमतौर पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं धीमा माना जाता है, उसके बाद दूसरी तिमाही के बाद नतीजे बाजार से भी और कंपनी जगत से भी अच्छे नजर आएंगे। नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजार पर। एशियाई बाजारों में आज मजबूती का दौर रहा। ताइवान का ताइएक्स 4.2%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 3.5%, जापान का निक्केई 3.3%, चीन का शंघाई कंपोफिट सूचकांक 0.8% और सिंगापुर स्ट्रेट साइम सूचकांक 0.5% की बढ़त से बंद हुए। हालांकि हांगकांग के हैंगसेंग में 0.5% की गिरावट भी नजर आई। विशाल, अगर पूरे तौर पे देखें एशिया और अमेरिका और अपने घरेलू बाजार को, शेयर बाजार की अगर हम बात करें, हमारे बाजार में कहीं ना कहीं मोटे तौर पे, चाहे अंकों के तौर पे, आंकड़ों के तौर पे गिरावट नजर आई, एशियाई बाजारों में लेकिन वहीं वो एक ठीक ठाक मजबूती नजर आ रही है। क्या जो मिडिल ईस्ट एशिया का जो क्राइसिस है, क्या हम मान चुके हैं या सारी अर्थव्यवस्थाएं मान चुकी हैं कि ये तो अभी थमने वाला नहीं है, लंबे समय तक चलेगा, उसको हमने एडजस्ट कर लिया, ऑब्जॉर्व कर लिया, और अब उसके साथ आगे बढ़ने के लिए सब तत्पर हैं, या अभी भी बाजार इसके प्रति सेंसिटिव तो है लेकिन ओवर सेंसिटिव नहीं है?
2: देखिए, मैं यहाँ थोड़ा सा डिफर करता हूँ, क्योंकि इस मसले पर बाजार सेंसिटिव भी रहेगा और ओवर सेंसिटिव भी रहेगा। अगर आपको 2-4-5 दिन या हफ्ता, एक हफ्ते की ट्रेडिंग नंबर्स में अगर उस तरह का इम्पैक्ट नहीं दिखाई देता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब भूल गए हैं या सब ने मान लिया है कि इसके साथ जीना पड़ेगा, क्योंकि वो संभव नहीं है। एनर्जी सेक्टर में ऐसा संभव नहीं है कि आपके जो मेन ऑयल प्रोड्यूसिंग जो बास्केट है, जिसे हम मिडिल ईस्ट कहते हैं, वहाँ इस स्तर का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहे। ऐसा नहीं है कि वहाँ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते हैं, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट लगातार चलते रहे हैं, और लगभग हर कुछ साल बाद कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, लेकिन इस स्तर का कॉन्फ्लिक्ट और इतना लंबा उसे चलना, और खासतौर पे ऐसी स्थिति पे पहुंच जाना जहां पे कोई समाधान नहीं दिखाई दे रहा हो। यहां केवल ऑयल प्रोडक्शन की बात नहीं है, यहां पे सप्लाई चेन की भी बात है। इसका सीधा असर सप्लाई चेन पे दिख रहा है। तो वो जो सप्लाई चेन है उसका असर हर इकोनॉमी को, दुनिया की हर जो अर्थव्यवस्था है उसको, हर देश जो है, हर बाजार जो है उसको झेलना पड़ेगा। हाँ, यहां मैं आपसे सहमत हूं कि कुछ जिन्हें कहा जाए कि समझदार देश या समझदार अर्थव्यवस्था, जिनमें से हम भारत को एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, उन्होंने रास्ते ज़रूर ढूंढे हैं और एक तरीका ज़रूर ढूंढा है कि हम किस तरह से माफ़ कीजिएगा, किस तरह से शॉर्ट टर्म में या मिड टर्म में इस तरह की जो मुसीबत है उससे निपट सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर आप बात करें तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इसका समाधान निकालना ही पड़ेगा, जितनी जल्दी निकाला जा सके उतना बेहतर है।
0: All right, moving on to the next big story of the day. US President Donald Trump has announced a 50% tariff on a range of Canadian imports, accusing the country of continuing to discriminate against American products. The White House said the new duties will take effect in 30 days. US President Trump's latest move has led to fears of a deepening trade war between the two close allies as the relationship between Trump and Canada's Prime Minister Mark Carney continues to deteriorate. Vishal, what could be the impact of such an announcement on stock markets worldwide?
2: Well, the tariff war unleashed by President Trump has had a lot of impact on markets across the world, economies across the world as well. And, these are fresh salvos in that conflict, the trade tariff conflict. But looks like, Canada has also made it very clear earlier that they're not going to bow down to any unrealistic demands or any undue pressure as well. But both sides largely understand one aspect also, that they will require each other. They are neighbors and they've been close trading partners over decades and centuries as well. So something which they can't wish away. There is always a meeting ground, and hopefully both sides will reach that meeting ground. But in terms of impact, I'm pretty sure that there will be some, negative impact on the markets, specifically, in US, in Canada, and in European markets as well. But it's unlikely to have too much of a bearing on Asian markets and specifically us out here in India.
1: Now, let's talk about some other news. President Drauvdri Murmu has said that

0: भारत और उत्तरी मकदूनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। इस कॉपीएम में राष्ट्रपति गोडाना के साथ बातचीत में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी किया। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं। साथ ही आईटी और आईटी सक्षम सेवाओं, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, बायोटेक्नोलॉजी, पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म निर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करने पर भी सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि भारत और उत्तरी मकदूनिया बिजनेस फोरम आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक अहम मंच भी प्रदान करेगा।
1: बैंक्स हैव मोबिलाइज्ड ओवर 20.7 बिलियन यूएस डॉलर्स इन फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लोज अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज स्पेशल स्वैप स्कीम टिल फ्राइडे लास्ट वीक। The scheme was operationalized on 8th of June. According to RBI's data issued yesterday, of the total deposits, banks received 17.4 billion US dollars through foreign currency non-resident FCNR bank deposits. Nearly 2 billion USD were raised through overseas foreign currency borrowings or OFCBs and over 1.3 USD through external commercial borrowings. RBI had announced this conceptual swap facility with a view to strengthen India's balance of payments and incentivize capital inflows. The swap facility for FCNRB deposits will remain available until 30th of September 2026. Vishal, can this rise in FCNR deposits be seen as a sign of growing global confidence in India's economic stability?
2: That is one way of looking at it. The other way of looking at it is that the RBI has given the opportunity or the option to non-resident Indians, NRIs or, OCI card holders and all these people, those who have gone abroad to various countries, made their mark, have been earning a significant amount of money, to go ahead and park their money, or rather invest their money within the country, that is India, with very, very significant, options provided in the FCNRB. Because largely, if you look at FCNRB, it's more of a fixed deposit for, the NRIs. Now, that's a very interesting aspect. It's like this, that say, for example, I'm settled in United States or some other country. I've earned, say, $1 lakh. That is my earning. Now, there are currency fluctuations as well. So what RBI says is it gives me an option through this particular scheme that I can go ahead and invest or park my money in Indian banks for a specific tenure, maybe 1 year, maybe 2 years, and the maximum is 5 years. Now, what do I get out of it? My money will be parked in US dollars if I have earned it in US dollars. If I have earned it in, pound sterling, it'll be parked in pound sterling. So there is no change of currency. So basically, I then save money on exchange rates as well. That is one. Two, when I want to, get my money back, I'll get the principal and the interest as well to my overseas account. I can get back the entire 100% of that money. There is no tax as well on this. That is one. There's one condition, though, which RBI has imposed, and that condition is really insignificant and important from both point of view. That is that you cannot withdraw before 1 year. There is a period, holding period, that is minimum is one year. Now, what do we get out of it? What do RBI gets out of it? We get foreign currency. Then there is a swap facility, which banks can utilize. The other banks can utilize. They can, park their dollars with the RBI, get, rupee in that. So RBI Reserve Bank of India gets a lot of maneuvering and elbow room as far as, currency fluctuations are concerned. Our foreign currency, target is achieved. The coffers are much, much more bigger. And as far as investors are concerned, it's a win-win situation for them so that their money is safe in their, country of their origin. That's one. And they can get it back as and when they want it without any tax.
1: All right, perfect. Global crude oil prices gained today. Brent crude was trading over 1.7% up at $90.76 per barrel in intraday trade. West Texas intermediate crude was trading nearly 1.7% up at $83.87 per barrel when reports last came in. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 0.9% up at 1,43,280 rupees per 10 grams, while silver was trading 2.3% up at 2,23,620 rupees per kilogram a short while ago.
0: Multi commodity exchange mein agast ke vaida karobar mein sona 0.9% ki badhat se 1,42,608 rupees prati gram ke star pe raha. Chandi bhi 2.1% ki mazbooti se 2,23,100 rupees prati kilogram ke star par karobar karti nazar aayi. Vishal, अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें जो कि शायद बहुत हॉट टॉपिक है, वापस से वही $90 के आसपास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये अभी आपके हिसाब से ठीक है, स्पेकुलेशन की बात नहीं है, लेकिन एक विशेषज्ञ के तौर पे आप कहां देखते हैं ये कितना अभी हमारे दर्द का कारण बन सकता है? दूसरा इसी के साथ साथ आमतौर पर ऐसे देखा था डॉलर मजबूत होता है सोना गिरता है, उधर डॉलर भी मजबूत है लेकिन सोने ने भी धीरे धीरे अपनी चाल बढ़ानी शुरू करी है, पहले तेल फिर सोना.
2: जी बिल्कुल, तो पहले तेल की बात करते हैं. तेल पे नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है और मेरा मानना है कि जिस हिसाब से कंफ्यूजिंग सिग्नल्स हैं, जिस हिसाब से डेवलपमेंट्स चल रही हैं मिडल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट में ईरान और अमेरिका के बीच, मुझे लगता है कि ये जो चाल अब क्रूड ऑयल के ऊपर की तरफ चली है वो थोड़े दिनों तक बरकरार रह सकती है और वो दर्द का कारण जरूर बन सकता है.
0: $100 के ऊपर तो नहीं जाएगा,
2: मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं जाएगा, लेकिन उम्मीद तो हम सब करेंगे कि 95 से भी ऊपर ना जाए. और रही बात सोने की, तो आपने सही कहा, ऐसा आमतौर पर देखा जाता है, लेकिन इस वक्त वो जो दोनों हैं वो कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स पे दोनों चीजें काम कर रही हैं, डॉलर और सोना. लेकिन सोने को लेकर मैं जरूर कहूंगा कि मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि सोने में एक बार फिर से उछाल देखने को मिल सकता है और उस पे जरूर.
0: लगभग सभी धातुएं जो है काफी मजबूत स्थिति में हैं, ये कुछ चीजें क्या ये स्वाभाविक है या कुछ और भी वजह आपको नजर आती है?
2: अभी हमारे पास समय कम है, हालांकि ये एक बहुत बड़ा और बहुत वृद्ध टॉपिक है, इस पर चर्चा जरूर की जा सकती है, लेकिन हाँ मैं जरूर कहूंगा कि इस वक्त सभी धातुएं एक मजबूत स्थिति पे खड़ी है और उनका रिएक्शन अब मजबूती के ग्राउंड से ऊपर की तरफ होगा, नीचे की तरफ मुझे जाता नहीं दिख रहा.
0: चलिए विशाल, कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा हमारे श्रोताओं को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर.
1: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस फॉल, सेंसेक्स ड्रॉप्स नियरली 250 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 24,188. मोस्ट एशियन स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड इन पॉजिटिव टेरिटरी एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज. And that's all in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Until then, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। गीत मेरे मन में आपके लिए, स्वागत करती हूं मैं कुसुम। पहला गीत लिया है हमने फिल्म साजन से, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में आपके लिए।
1: शम की डोरी

फिल्म भीगी पलकें का ये गीत आप सुन रही हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। इससे पहले आपने गीत सुना फिल्म श्री 420 का।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: इसी गीत के साथ ही गीत मेरे मन में यहीं तक, कुसुम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में इस चैनल पर आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद कल दिनभर के लिए स्थगित रही। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज का पायलट फेज शुरू किया है। ये देश भर में जमीनी स्तर के डिजिटल क्रिएटर्स को पहचानने, उन्हें आगे बढ़ाने और बढ़ावा देने की एक पहल है। वेब्स ओटीटी के अंतर्गत माई वेब्स प्लेटफॉर्म पर आधारित इस चैलेंज में लोगों को अपने जिलों की अनोखी कहानियों और सांस्कृतिक विरासत को दिखाने वाले छोटे वीडियो बनाने के लिए आमंत्रित किया गया है। प्रतिभागी पहली से 31 अगस्त के बीच वेब्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर माई वेब सेक्शन पर 1 से 3 मिनट के वीडियो अपलोड कर सकते हैं। युवा कार्य विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी 2026 का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इसे देश भर के युवाओं को भारत के राष्ट्रीय ध्वज तथा उसके महत्व के बारे में अपनी समझ को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने कहा है कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं में भारत के राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। भारत के जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक में पारदर्शी, नियम आधारित और विकासोन्मुख बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। बैठक में WTO के सदस्य देशों ने भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था, डिजिटल सार्वजनिक ढांचे, सीमा शुल्क प्रणाली में सुधार और सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यमों को वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जोड़ने के प्रयासों की सराहना की। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। भारत अपने अभियान की शुरुआत 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ करेगा। इसके बाद 17 अगस्त को इंग्लैंड और 19 अगस्त को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari. The government has said it is ready to hold discussion in Parliament on NEET paper leak case and other related issues. Talking to media in New Delhi yesterday, Union Minister Jitendra Singh accused Leader of Opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, of deviating from his earlier demand of having the discussion over NEET related issues despite government assurance.
3: It was conveyed that on behalf of the government, I could assure Rahul Gandhi ji that government is ready to have a detailed discussion on NEET related agitation, protest, also on all the other issues related to NEET. When I went back to Rahul ji with this message, he said no, but I also want the resignation of the education minister. Then I politely tried to submit before him. I said, look here, this is not done, because just a few minutes back you told me that if I got the assurance from the government, you would call off your dharna immediately, but now you're saying no.
0: Earlier in the day, Congress President Mallikarjun Kharge, Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra, along with other party members, staged a protest demanding discussion on the NEET issue. Union Minister Jitendra Singh and Union Home Secretary Govind Mohan met the Congress leaders at the protest site at Lok Kalyan Marg. Meanwhile, in the Parliament, both Lok Sabha and Rajya Sabha were adjourned for the day yesterday following repeated disruptions by opposition members over several issues, including the NEET paper leak case. Prime Minister Narendra Modi has vowed strict action against those involved in the recent NEET examination paper leak case and safeguarding the interests of the country's youth. He said the government is taking several measures to prevent such incidents. Mr. Modi said this while addressing the National Democratic Alliance NDA parliamentary party meeting, now also known as Mangal Milan, at Parliamentary House Complex yesterday. Talking to media, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said during the meeting, Prime Minister Modi called for coordinated efforts by all stakeholders to prevent paper leaks in future examinations across the country. Delhi police released all opposition leaders, including senior Congress leaders Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra and Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav, after they were detained from the protest site near Lok Kalyan Marg. They were protesting over the NEET paper leak issue. BJP yesterday criticised Leader of Opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, for staging a protest at Lok Kalyan Marg, saying that the conduct displayed by him is entirely unbecoming and condemnable. Talking to the media in New Delhi, BJP President Nitin Naveen said that the incident is unfortunate and termed it a dark day in India's political history. He also said that when the government accepted the conditions of the Congress on the NEET paper leak issue, Rahul Gandhi backtracked from his earlier demand, which reflects his immaturity. Mr. Naveen also appealed to the opposition parties, including the Congress, stating that the government is ready for any kind of discussion in Parliament. He added that the people of the country stand with Prime Minister Narendra Modi. Union Health Minister J.P. Nadda visited Dr. Ram Manohar Lohia Hospital in New Delhi yesterday and reviewed the condition of those injured during the protest held on Monday in the national capital over the alleged NEET UG exam paper leak. The minister held a meeting with the doctors at the hospital as well. He also visited Lady Harding Medical College and Hospital and met the injured protesters admitted there. President Draupadi Murmu yesterday said India and North Macedonia have agreed to enhance trade and investment while expanding cooperation in key sectors. President Murmu was addressing the media in Skopje after holding talks with her North Macedonian counterpart Gordana Sianvoska-Davkova. Later, addressing the Assembly of North Macedonia, President Murmu conveyed the goodwill of 1.4 billion Indians. After concluding her visit to North Macedonia, she will travel to Romania.
4: Hockey India has announced the 20-member squad for the upcoming FIH Men's World Cup in Belgium and the Netherlands to be held from the 15th of next month. Ace defender and drag flicker Harmanpreet Singh will lead the Indian side. Chief coach Craig Fulton is confident that the selected squad has a bright chance to write its own chapter in Indian hockey history. And that is the end of this news bulletin.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है निशिगंधा और मैं हूँ आपके साथ सुरभि। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अगर बात मोहब्बत की जाए तो मोहब्बत का सबसे खूबसूरत एहसास वही होता है जब जहाँ किसी की एक झलक दिल की धड़कनों को बदल कर रखते और फिर हर बार उसी की आहट, उसी का ख्याल हमारे इर्द गिर्द ठहर जाए और दिल बस एक ही ख्वाहिश करे कि काश वो सामने हो और ये वक्त यहीं थम जाए। दे मोहब्बत तो मोहब्बत में असर पैदा कर, दे मोहब्बत तो मोहब्बत में असर पैदा कर, जो इधर दिल में है या रब वो उधर पैदा कर। काम लेने हैं मोहब्बत में बहुत से या रब, काम लेने हैं मोहब्बत में बहुत से या रब, और दिल हमें दे एक और जिगर पैदा कर, और दिल हमें दे एक और जिगर पैदा कर।

निशिगंधा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। बहुत खूब कहा है किसी ने कि वो थका हुआ मेरी बाहों में ज़रा सो गया था। तो क्या हुआ? वो थका हुआ मेरी बाहों में ज़रा सो गया था तो क्या हुआ? मैंने चांद देखा है किसी शाख गुल पे झुका हुआ। जी हाँ, सच्चा प्यार वक्त का मोहताज नहीं होता। बदलते मौसम, बदलते दौर और बदलती राहों के बीच भी दिलों का रिश्ता अपनी खूबसूरती बनाए रखता है। मोहब्बत की यही तो सादगी है और यही गहराई जो हर दौर में नई लगती है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

निशिगंधा प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। जब कोई दिल के इतना करीब आ जाए कि उसकी मौजूदगी ही हर खुशी की वजह बन जाए और जिंदगी का हर रास्ता उसी से होकर गुजरता हुआ महसूस हो, जी हाँ यही तो है प्यार। ये प्यार का वही खूबसूरत एहसास है जो रिश्तों को अनमोल बना देता है। बहुत खूब कहा किसी ने कि ऐसा लगता है जिंदगी तुम हो, ऐसा लगता है जिंदगी तुम हो, अजनबी जैसे अजनबी तुम हो, अब कोई आरजू नहीं बाकी, जुस्तजू मेरी आखिरी तुम हो।

कभी कभी प्यार को शब्दों की जरूरत नहीं होती, आंखें ही दिल की हर बात कह जाती हैं, और एक मुस्कान अनकहे जज्बात को बहुत ही खूबसूरती से बयां कर देती है। आशिक समझ रहे हैं मुझे दिल की लगी से आप, आशिक समझ रहे हैं मुझे दिल लगी से आप, वाकिफ नहीं अभी मेरे दिल की लगी से आप।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। सुरभि के साथ आप सुन रहे हैं निशिगंधा। जिंदगी हर किसी को हर दिन कोई ना कोई खूबसूरत तोहफा नहीं देती, लेकिन कभी कभी कुछ किस्मत वालों को कुछ ऐसे लम्हे मिल जाते हैं जो बरसों के इंतज़ार के बाद मिलते हैं और फिर हमेशा के लिए दिल में बस जाते हैं। जब प्यार सच्चा हो तो उसकी मुलाकात, एक मुलाकात भी पूरी जिंदगी को संवार देती है, खूबसूरत बना देती है।

खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे, खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। खतावार समझेगी दुनिया तुझे, अब इतनी ज्यादा सफाई न दे। हंसो आज इतना किस शोर में, हंसो आज इतना किस शोर में, सदा सिसकियों की सुनाई न दे। खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे।

देखिए, चलते चलते हम अपने अंजाम की तरफ ही आ चुके हैं और चलते चलते एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुनवाएंगे आपको। एक और खूबसूरत सा गीत, बहुत खूब लिखा है किसी ने कि गुलाबों की तरह दिल अपना शबनम में भिगोते हैं, गुलाबों की तरह दिल अपना शबनम में भिगोते हैं, मोहब्बत करने वाले खूबसूरत लोग होते हैं। किसी ने जिस तरह अपने सितारों को सजाया है, किसी ने जिस तरह अपने सितारों को सजाया है, गजल के रेशमी धागों में यूं मोती पिरोते हैं, कहीं पानी कहीं शबनम कहीं आंसू भिगोते हैं, मोहब्बत करने वाले खूबसूरत लोग होते हैं।

और इस गीत के साथ निशिगंधा का ये सफ़र यहीं तक। हमारी आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर गीत सुहाने में, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेज़ी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि

0: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद कल दिन भर के लिए स्थगित रही। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2025 के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। मंत्रालय ने बताया कि ये पुरस्कार चार श्रेणियों में दिया जाता है। नामांकन 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर किए जा सकते हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के कोयम्बटूर और तिरुप्पुर का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने जानकारी दी है कि इस दौरे के दौरान श्री राधाकृष्णन कोयम्बटूर में GKNM नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति तिरुप्पुर के अविनाशी लिंगेश्वर शिव मंदिर भी जाएंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से फिलीपींस के मनीला की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। वे आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत, ईस्ट एशिया समिट और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। आसियान से जुड़ी बैठकों के साथ साथ विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। भारत अपने अभियान की शुरुआत 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ करेगा। इसके बाद 17 अगस्त को इंग्लैंड और 19 अगस्त को अपने चीर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान का सामना करेगा। कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बनाई। पुरुषों में आर्यवीर दीवान, युशा नफीस और गुरवीर सिंह की तिकड़ी भी पुरुष सिंगल्स के तीसरे दौर में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। गीत सुहाने लेकर मैं सुरभि आप सभी के बीच हाजिर हूँ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संगीत सिर्फ सुरों का मेल नहीं बल्कि यादों, भावनाओं और खूबसूरत लम्हों का भी साथी है। कुछ गीत ऐसे होते हैं जो समय के साथ कभी पुराने नहीं होते बल्कि हर बार सुनने पर दिल को एक नई ताजगी दे जाते हैं। तो चलिए आगाज करते हैं एक ऐसे ही सुरीले और सदाबहार गीत के साथ।

आशिक है मगर इश्क नुमाया नहीं रखते, आशिक है मगर इश्क नुमाया नहीं रखते, हम दिल की तरह गिरेबा नहीं रखते। सर रखते हैं सर में नहीं सौदाए मोहब्बत, दिल रखते हैं दिल में कोई अरमा नहीं रखते, हम दिल की तरह गिरेबा नहीं रखते, आशिक है मगर इश्क नुमाया नहीं रखते।

गीत सुहाने प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। बेवफा कहने से क्या वो बेवफा हो जाएगा, बेवफा कहने से क्या वो बेवफा हो जाएगा, तेरे होते इस सिफत का दूसरा हो जाएगा। शर्त कर लो फिर मुझे बर्बाद होना भी कबूल, शर्त कर लो फिर मुझे बर्बाद होना भी कबूल, खाक में मिलकर तो हासिल मुअद्दा हो जाएगा। तेरे होते इस सिफत का दूसरा हो जाएगा, बेवफा कहने से क्या वो बेवफा हो जाएगा।

तुम में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा जा, जा।

0: आ चांदनी भी मेरी तरह जाग रही है, आ चांदनी भी मेरी तरह जाग रही है, पलकों पे सितारों को लिए रात खड़ी है। ये बात की सूरत के भले दिल के बुरे हों, अल्लाह करे झूठ हो बहुतों से सुनी है। गजलों ने वहीं जुल्फ के फैला दिए साए, जिन राहों पे देखा है बहुत धूप कड़ी है। आ चांदनी भी मेरी तरह जाग रही है, पलकों पे सितारों को लिए रात खड़ी है।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

भूल शायद बहुत बड़ी कर ली, भूल शायद बहुत बड़ी कर ली, दिल ने दुनिया से दोस्ती कर ली। तुम मोहब्बत को खेल कहते हो, तुम मोहब्बत को खेल कहते हो, हमने बर्बाद जिंदगी कर ली। भूल शायद बहुत बड़ी कर ली, दिल ने दुनिया से दोस्ती कर ली। तुम मोहब्बत को खेल कहते हो, हमने बर्बाद जिंदगी कर ली। उसने देखा बड़ी इनायत से, आंखों आंखों में बात भी कर ली। आशिकी में बहुत जरूरी है बेवफाई कभी कभी कर ली। उसने देखा बड़ी इनायत से, आंखों आंखों में बात भी कर ली। तुम मोहब्बत को खेल कहते हो, हमने बर्बाद जिंदगी कर ली।

और इसी गीत के साथ गीत सुहाने का ये सफर यहीं तक, आपकी हमारी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद कल दिनभर के लिए स्थगित रही। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल खरीफ की बुआई की प्रगति, मानसून की स्थिति, उर्वरक और बीज की उपलब्धता तथा अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा की। नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री चौहान ने अधिकारियों को कम वर्षा वाले जिलों की निगरानी करने और राज्य सरकारों के साथ समन्वय बनाए रखने का निर्देश दिया। युवा कार्य विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी 2026 का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इससे देश भर के युवाओं को भारत के राष्ट्रीय ध्वज तथा उसके महत्व के बारे में अपनी समझ को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के कोयंबटूर और तिरुपुर का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने जानकारी दी है कि इस दौरे के दौरान श्री राधाकृष्णन कोयंबटूर में जीके एनएम नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति तिरुपुर के अविनाशी लिंगेश्वर शिव मंदिर भी जाएंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से फिलीपींस के मनीला की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। वे आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत ईस्ट एशिया समिट और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। आसियान से जुड़ी बैठकों के साथ साथ विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। भारत ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक में पारदर्शी, नियम आधारित और विकासोन्मुख बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। भारत अपने अभियान की शुरुआत 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ करेगा। इसके बाद 17 अगस्त को इंग्लैंड और 19 अगस्त को अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान का सामना करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. The government has said it is ready to hold discussion in Parliament on NEET paper leak case and other related issues. Talking to media in New Delhi yesterday, Union Minister Jitendra Singh accused Leader of Opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, of deviating from his earlier demand of having the discussion over NEET-related issues, despite government assurance.
3: It was conveyed that on behalf of the government, I could assure Rahul Gandhi ji that government is ready to have a detailed discussion on NEET-related agitation, protest, also on all the other issues related to NEET. When I went back to Rahul ji with this message, he said, no, but I also want the resignation of the education minister. Then I politely tried to submit before him. I said, look here, this is not done. Because just a few minutes back, you told me that if I got the assurance from the government, you would call off your dharna immediately. But now you're saying no.
2: Earlier in the day, Congress President Mallikarjun Kharge, Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra, along with other party members, staged a protest demanding discussion on the NEET issue. Union Minister Jitendra Singh and Union Home Secretary Govind Mohan met the Congress leaders at the protest site at Lok Kalyan Marg. Meanwhile, in the Parliament, both Lok Sabha and Rajya Sabha were adjourned for the day yesterday following repeated disruptions by opposition members over several issues, including the NEET paper leak case yesterday. Prime Minister Narendra Modi has vowed strict action against those involved in the recent NEET examination paper leak case and safeguarding the interests of the country's youth. He said the government is taking several measures to prevent such incidents. Mr. Modi said this while addressing the National Democratic Alliance NDA parliamentary party meeting, now also known as Mangal Milan, at Parliament House complex yesterday. Talking to media, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said during the meeting, Prime Minister Modi called for a coordinated efforts by all stakeholders to prevent paper leaks in future examinations across the country. Delhi police released all opposition leaders, including senior Congress leaders Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra and Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav, after they were detained from the protest site near Lok Kalyan Marg. They were protesting over the NEET paper leak issue. BJP yesterday criticised Leader of Opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi for staging a protest at Lok Kalyan Marg, saying that the conduct displayed by him is entirely unbecoming and condemnable. Talking to the media in New Delhi, BJP President Nitin Naveen said that the incident is unfortunate and termed it as a dark day in India's political history. He also said that when the government accepted the conditions of the Congress on the NEET paper leak case, LOP Rahul Gandhi backtracked from his earlier demand, which reflects his immaturity. Mr. Naveen also appealed to the opposition parties, including the Congress, stating that the government is ready for any kind of discussion in Parliament. He added that the people of the country stand with the Prime Minister Narendra Modi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will be on a two-day visit to Manila in Philippines from today to participate in foreign minister-level meetings under the ASEAN framework, including the ASEAN-India East Asia Summit and ASEAN Regional Forum meetings. On the margins of the ASEAN-related meetings, the External Affairs Minister will participate in a Quad Foreign Ministers meeting with his counterparts from Australia, Japan and the United States. He is also expected to hold bilateral meetings with his counterparts from participating countries. India yesterday delivered relief materials, including food items and family tents, to Afghanistan's National Disaster Management Authority to support affected communities in the wake of the floods in Nuristan. In a social media post, External Affairs Ministry said India stands with the Afghan people at this difficult time. The government yesterday said under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana PMJDY, a total of 58.63 crore Jan Dhan accounts have been opened as of the first of this month, holding a deposit balance of over 3.08 lakh crore rupees. In a written reply to a question in the Rajya Sabha, Minister of State for Finance, Pankaj Chaudhary, stated that of these, 32.68 crore Jan Dhan accounts are held by women and about 45.62 crore PMJDY accounts have been opened in rural and semi-urban areas. Hockey India has announced a 20-member squad for the upcoming FIH Men's World Cup in Belgium and Netherlands to be held from 15th of next month. And that is the end of this news bulletin.

0: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। जी हाँ, मैं हूँ आपके साथ सुरभि और आप सुन रहे हैं रात सुरमई। कभी तो आसमां से चांद उतरे जाम हो जाए, कभी तो आसमां से चांद उतरे जाम हो जाए, तुम्हारे नाम की खूबसूरत शाम हो जाए, हमारा दिल सवेरे का सुनहरा जाम हो जाए, चरागों की तरह आंखें जलें जब शाम हो जाए, तुम्हारे नाम की खूबसूरत शाम हो जाए।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

रात सुरमई आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। कहीं चांद राहों में खो गया, कहीं चांदनी भटक गई, कहीं चांद राहों में खो गया, कहीं चांदनी भी भटक गई। मेरे साथ था तुझे जागना, तेरी आंख कैसे झपक गई। कभी हम मिले तो भी क्या मिले, वही दूरियां वही फासले। कभी हम मिले तो भी क्या मिले, वही दूरियां वही फासले। न कभी हमारे कदम बढ़े, न कभी तुम्हारी झिझक गई। मेरे साथ था तुझे जागना, तेरी आंख कैसे झपक गई।

रात सुरमई आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। बहुत खूब लिखा है किसी ने कि वो गजल बालों का उसलूब समझते होंगे, चांद कहते हैं किसे खूब समझते होंगे, इतनी मिलती है मेरी गजलों से सूरत तेरी, लोग तुझको मेरा महबूब समझते होंगे। मैं समझता था मोहब्बत की ज़बाँ खुशबू है, फूल से लोग इसे खूब समझते होंगे। भूल कर अपना ज़माना ये ज़माने वाले, आज के प्यार को मायूब समझते होंगे, वो गज़ल वालों का उसलूब समझते होंगे, चांद कहते हैं किसे खूब समझते होंगे।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

प्यार भरी नजर का जादू कुछ ऐसा होता है कि दिल अपनी धड़कनों का हिसाब ही भूल जाता है। एक मुस्कान मासूम सी, एक चुपके से उठी नजर और अनकहे एहसास, यही तो मोहब्बत की है सबसे हसीन जबान। और इसी दिलकश अदा और प्यार की मीठी कशिश से सजा है अगला गीत।

धीरे धीरे वक्त हमें अंजाम की तरफ ले आया। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और प्रोग्राम है रात सुरमई और मैं हूं आपके साथ सुरभि। जी हां, जब मोहब्बत दिल में उतरती है तो हर गली रोशन लगने लगती है और हर शाम चांदनी से भर जाती है। किसी अपने की एक झलक, उसकी एक मुस्कान और एक मुलाकात का इंतज़ार, यही प्यार की सबसे खूबसूरत धड़कन है। बहुत खूब कहा है किसी ने कि खुशबू की तरह आया वो तेज हवाओं में, खुशबू की तरह आया वो तेज हवाओं में, मांगा था जिससे हमने दिन रात दुआओं में। तुम छत पे नहीं आए वो घर से नहीं निकला, ये चांद बहुत लटका सावन की घटाओं में। इस शहर में एक लड़की बिल्कुल है गजल जैसी, फूलों की बदन वाली खुशबू सी अदाओं में, खुशबू की तरह आया वो तेज हवाओं में, मांगा था जिसे हमने दिन रात दुआओं में।

इसी गीत के साथ राज सुरमई का ये सफर यहीं तक। हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, और अब सुरभि को दीजिए इजाजत। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं

0: प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर जनता को परेशान किया और सुरक्षा नियमों की अनदेखी की। उन्होंने कहा कि सरकार नीट मामले पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस ने लोकतांत्रिक चर्चा के बजाय प्रदर्शन का रास्ता चुना। श्री प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों की हर वास्तविक चिंता पर चर्चा करने और समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद कल दिन भर के लिए स्थगित रही। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2025 के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। नामांकन 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर किए जा सकते हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के कोयम्बटूर और तिरुपुर का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने जानकारी दी है कि इस दौरे के दौरान श्री राधाकृष्णन कोयम्बटूर में GKNM नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से फिलीपींस के मनीला की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। वे आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत, ईस्ट एशिया समिट और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। भारत अपने अभियान की शुरुआत 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ करेगा। इसके बाद 17 अगस्त को इंग्लैंड और 19 अगस्त को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। The government has said it is ready to hold discussion in Parliament on NEET paper leak case and other related issues. Talking to the media in New Delhi yesterday, Union Minister Jitendra Singh accused Leader of Opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, of deviating from his earlier demand of having the discussion over NEET related issues despite government assurance.
3: It was conveyed that on behalf of the government, I could assure Rahul Gandhi ji that government is ready to have a detailed discussion on NEET related agitation, protest, also on all the other issues related to NEET. When I went back to Rahul ji with this message, he said no, but I also want the resignation of the education minister. Then I politely tried to submit before him. I said, look here, this is not done, because just a few minutes back you told me that if I got the assurance from the government, you would call off your dharna immediately, but now you are saying no.
2: Earlier in the day, Congress President Mallikarjun Kharge, Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra, along with other party members, staged a protest demanding discussion on the NEET issue. Union Minister Jitendra Singh and Union Home Secretary Govind Mohan met the Congress leaders at the protest site at Lok Kalyan Marg. Meanwhile, in the parliament, both Lok Sabha and Rajya Sabha were adjourned for the day yesterday following repeated disruptions by opposition members over several issues, including the NEET paper leak case yesterday. Prime Minister Narendra Modi has vowed strict action against those involved in the recent NEET examination paper leak case and safeguarding the interests of the country's youth. He said the government is taking several measures to prevent such incidents. Mr. Modi said this while addressing the National Democratic Alliance NDA Parliamentary Party meeting, now also known as Mangal Milan, at Parliament House complex yesterday. Talking to media, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said, during the meeting, Prime Minister Modi called for coordinated efforts by all stakeholders to prevent paper leaks in future examinations across the country. Delhi police released all opposition leaders, including senior Congress leaders Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra and Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav after they were detained from the protest site near Lok Kalyan Marg. They were protesting over the NEET paper leak issue. BJP yesterday criticised Leader of Opposition and Lok Sabha Rahul Gandhi for staging a protest at Lok Kalyan Marg, saying that the conduct displayed by him is entirely unbecoming and condemnable. Talking to the media in New Delhi, BJP President Nitin Naveen said that the incident is unfortunate and termed it as a dark day in India's political history. He also said that when the government accepted the conditions of the Congress on the NEET paper leak issue, Leader of Opposition Rahul Gandhi backtracked from his earlier demand, which reflects his immaturity. Mr. Naveen also appealed to the opposition parties, including the Congress, stating that the government is ready for any kind of discussion in Parliament. He added that the people of the country stand with the Prime Minister Narendra Modi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will be on a two-day visit to Manila in Philippines from today to participate in foreign minister-level meetings under the ASEAN framework, including the ASEAN-India, East Asia Summit and ASEAN Regional Forum meetings. On the margins of the ASEAN-related meetings, the External Affairs Minister will participate in a Quad Foreign Ministers meeting with his counterparts from Australia, Japan and the United States. He is also expected to hold bilateral meetings with his counterparts from participating countries. India yesterday delivered relief materials, including food items and family tents, to Afghanistan's National Disaster Management Authority to support affected communities in the wake of the floods in Nuristan. In a social media post, External Affairs Ministry said India stands with the Afghan people at this difficult time. The government yesterday said under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, a total of 58.63 crore Jan Dhan accounts have been opened as of the 1st of this month, holding a deposit balance of over 3.08 lakh crore rupees. He added that the government launched the National Mission for Financial Inclusion, namely PMJDY, in August 2014 to provide universal banking services for every unbanked household. Hockey India has announced a 20-member squad for the upcoming FIH Men's World Cup in Belgium and Netherlands to be held from the 15th of next month. Ace defender and rack flicker Harmanpreet Singh will lead the Indian side. And that is the end of this news bulletin.

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। आइए सुनते हैं युगल गीतों का कार्यक्रम हमराही।

रात के 3:11 और 18 सेकंड हुए हैं। हमराही कार्यक्रम में आप सभी को मेरा यानी अर्चना सचदेवा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, प्यार का रास्ता कभी सीधा साधा तो रहा ही नहीं, इसमें थोड़ी शरारत होती है।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म धरती से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, प्यार अगर सच्चा है तो वो कभी नहीं झुकता, ना तो वह झुकता है और ना ही किसी को झुकाता है, बल्कि वह सर उठाकर हर तूफान का सामना करता है।

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म उमंग से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, प्यार की डोरी जब दो दिलों के बीच में बंध जाती है, फिर ना जमाने की कोई बंदिश ना किसी का डर, फिर तो ये खूबसूरत प्रेम खामोशी में भी कितना कुछ कह जाता है। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में फिल्म धरती कहे पुकार के से ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म आप आए बहार आई से।

अखियां भूल गई हैं सोना, जाग जाग रातें ढलती हैं। अखियां भूल गई हैं सोना, जाग जाग रातें ढलती हैं। तेरी यादों के चिरागों से पलकों की शामें जलती हैं। सोचती हूँ सो जाऊं किसी ख्वाब में जाकर, पर ख्वाबों में भी तेरी ही आहटें चलती हैं। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और गीता रॉय की आवाज में फिल्म गूंज उठी शहनाई से ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में फिल्म चोरी चोरी से अभी आपने गीत सुना। तुम दूर जाओगे तो भी पास ही रहोगे, तुम दूर जाओगे तो भी पास ही रहोगे, यादों के सहारे ही सही हमेशा दिल में रहोगे। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म पारस मणि से ये गीत।

मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में फिल्म अप्रैल फूल से अभी आपने गीत सुना। ना बंधन है ना फेरे हैं, ना बंधन है ना फेरे हैं, एक एहसास है जिसमें हम तेरे हैं। दोस्तों, आपका और हमारा साथ भी ऐसे ही बना रहे, क्योंकि आप हमारे लिए बने हैं और हम आपके लिए।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म कोहिनूर से अभी आप ये गीत सुन रहे हैं। और इसी के साथ ही दोस्तों, अब हमराही कार्यक्रम से अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर जनता को परेशान किया और सुरक्षा नियमों की अनदेखी की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद कल दिन भर के लिए स्थगित रही। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल के साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के कोयम्बटूर और तिरुपुर के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने जानकारी दी है कि इस दौरे के दौरान श्री राधाकृष्णन कोयम्बटूर में जीकेएनएम नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आज नई दिल्ली का दौरा करेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी को विजयनगरम जिले के भोगपुरम में बनने वाले अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए आमंत्रित करेंगे। इस हवाई अड्डे का उद्घाटन 1 अगस्त को प्रस्तावित है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू करने की कोशिश करता है तो अमेरिका कड़ी सैनिक कार्रवाई करेगा। व्हाइट हाउस में लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन के साथ बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि ईरान बातचीत करना चाहता है, लेकिन यदि उसने परमाणु गतिविधियां दोबारा शुरू की या हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमला किया तो अमरीका इसका कड़ा जवाब देगा। उधर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियान ने कहा है कि मौजूदा हालात में देश का नेतृत्व सर्वोच्च नेता के मार्गदर्शन में काम कर रहा है और ईरान अपने फैसले मजबूती से लेता रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में गुजरात, पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 दिनों में असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में तेज बारिश होगी। दिल्ली में आज बादल छाए रहने का अनुमान है। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. The government has said it is ready to hold discussion in Parliament on NEET paper leak case and other related issues. Talking to media in New Delhi yesterday, Union Minister Jitendra Singh accused Leader of Opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, of deviating from his earlier demand of having the discussion over NEET-related issues despite government assurance.
3: It was conveyed that on behalf of the government, I could assure Rahul Gandhi ji that government is ready to have a detailed discussion on NEET-related agitation, protest, also on all the other issues related to NEET. When I went back to Rahul ji with this message, he said no, but I also want the resignation of the education minister. Then I politely tried to submit before him. I said, look here, this is not done, because just a few minutes back you told me that if I got the assurance from the government, you would call off your dharna immediately, but now you're saying no.
2: Earlier in the day, Congress President Mallikarjun Kharge, Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra, along with other party members, staged a protest demanding discussion on the NEET issue. Union Minister Jitendra Singh and Union Home Secretary Govind Mohan met the Congress leaders at the protest site at Lok Kalyan Marg. Meanwhile, in the Parliament, both Lok Sabha and Rajya Sabha were adjourned for the day yesterday, following repeated disruptions by opposition members over several issues, including the NEET paper leak case yesterday. Prime Minister Narendra Modi has vowed strict action against those involved in the recent NEET examination paper leak case and safeguarding the interests of the country's youth. He said the government is taking several measures to prevent such incidents. Mr. Modi said this while addressing the National Democratic Alliance NDA Parliamentary Party meeting, now also known as Mangal Milan, at Parliament House complex yesterday. Talking to media, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said, during the meeting, Prime Minister Modi called for coordinated efforts by all stakeholders to prevent paper leaks in the future examinations across the country. Delhi police released all opposition leaders, including senior Congress leaders Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra, and Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav, after they were detained from the protest site near Lok Kalyan Marg. They were protesting over the NEET paper leak issue. BJP yesterday criticised Leader of Opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi for staging a protest at Lok Kalyan Marg, saying that the conduct displayed by him is entirely unbecoming and condemnable. Talking to the media in New Delhi, BJP President Nitin Naveen said that the incident is unfortunate and termed it as a dark day in India's political history. He also said that when the government accepted the conditions of the Congress on the NEET paper leak issue, LOP Rahul Gandhi backtracked from his earlier demand, which reflects his immaturity. Mr. Naveen also appealed to the opposition parties, including the Congress, stating that the government is ready for any kind of discussion in Parliament. He added that the people of the country stand with Prime Minister Narendra Modi. President Draupadi Murmu has called for expanding India-North Macedonia economic ties, urging businesses from both the countries to move beyond trade and forge long-term partnerships based on investment, technology and innovation. Addressing the India-North Macedonia Business Forum in Skopje, President Murmu said her visit, the first ever bilateral visit by an Indian president to North Macedonia, reflects India's strong commitment to strengthening relations. She noted that the current trade volume represents only a fraction of its potential, expressing confidence that bilateral trade could be doubled by the end of this decade. President Murmu identified key sectors for cooperation, including digital innovation and artificial intelligence, pharmaceuticals and healthcare, agro-processing and green energy. She invited North Macedonia to collaborate with India on digital public infrastructure, highlighting the success of the India's UPI platform in promoting financial inclusion. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will be on a two-day visit to Manila in Philippines from today to participate in foreign minister-level meetings under the ASEAN framework, including the ASEAN-India, East Asia Summit and ASEAN Regional Forum meetings. Hockey India has announced a 20-member squad for the upcoming FIH Men's World Cup in Belgium and the Netherlands to be held from 15th of next month. Ace defender and rack flicker Harmanpreet Singh will lead the Indian side. And that is the end of this news bulletin.
4: 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम अरुणिमा।

सुबह के 4:11 और 10 सेकंड हुए हैं। अरुणिमा कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को इस प्यारे से मौसम में मेरा प्यार भरा नमस्कार, आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम कोई भी काम करते हैं तो हमें एक आशा होती है कि उसका परिणाम अच्छा हो, पर मन में अलग अलग विचार भी आते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, पर फिर भी हमारे मन में एक उम्मीद की किरण तो जल ही जाती है। और दोस्तों, ज़्यादा सोचना भी कभी कभी हमारी परेशानी का सबब बन जाता है, इसलिए जो होगा अच्छा होगा यही सोचकर आगे बढ़ते रहिए और चलते रहिए। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म आशा से ये गीत।

दोस्तों, मौसम बहुत सुहाना है और बाहर हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है। जिंदगी के कुछ पल इस प्यारे से मौसम के साथ बिताइए और साथ में सुनिए ये प्यारा सा गीत।

लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म बाबू से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जीवन में सुख और दुख दोनों ही आएंगे, यानी फूल और कांटे दोनों ही होंगे, और अगर आपने दोनों के संग रहना सीख लिया तो जिंदगी अपने आप ही महक उठेगी।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म अनोखी रात से अभी आपने गीत सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अरुणिमा में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अगला गीत सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म मंजिल से।

उलझनों से भरी इस जिंदगी को, उलझनों से भरी इस जिंदगी को जरा बेफिक्री से जीना सीखो। आसमां तो वही है साहिब, बस तुम थोड़ा खुलकर उड़ना सीखो। आइए सुनते हैं नर्थ की फिल्म से आशा भोसले की आवाज में ये प्यारा सा गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

छोड़कर सब फिक्र पीछे आ गए खुले आसमां तले, छोड़कर सब फिक्र पीछे आ गए खुले आसमां तले। जब भी मिले फुर्सत के पल, प्यार का जहां बसाने चले। आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म ज्वेल थीफ से ये गीत।

0: अटक गया
1: क्यों?
0: कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता,
2: कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता। दुखी बेदुखी।

बिल्कुल दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे ही जिया जाए कि कुछ फर्क ही ना पड़े। ये अभी आपने गीत सुना सत्ते पे सत्ता फिल्म से आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में। और दोस्तों, इस दुनिया में हम आए हैं तो सभी तरह से दुनियादारी

सुबह के 5:11 और 10 सेकंड हुए हैं। भोर सुहानी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सुबह के इस सुहाने और शांतिमय माहौल में प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से भजन से, जो गाया है शंकर महादेवन और साथियों ने।